0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904427575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

0: میں جو حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کی منزلیں اچھی کرے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، آسانیاں پیدا کرے. اور یہ جو دن ہے، یہ جو مہینہ ہے جو گزر رہا ہے، ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہے، اس کے بالکل آخری دن ہے، اور یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اشہر الحرم کہا جاتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ان عدت اشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم. فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے، اس دن سے جس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین اور آسمان کو پیدا کی ہے. اور فرمایا کہ ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں کے لیے خاص فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا. وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ یہی ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ و محرم، اور اس کے بعد ایک آخر اکیلا مہینہ آتا ہے رجب. تو یہ ذی القعدہ ختم ہو گیا، اور ذی الحجہ کا مہینہ یہ بھی آخر اختتام پر ہے، اور اس کا آنے والا مہینہ، یہ سارے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے کے مہینے کا معنی ہے کہ 12 مہینوں میں سے ان 4 مہینوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عظمت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ خیر و برکت والا مہینہ بنایا ہے. اور اسی لیے فرمایا کہ جب خیر و برکت والے مہینے ہیں، تو خیر و برکت والے مہینوں میں، خیر و برکت والے دنوں میں، خیر و برکت والے مقام میں جب کوئی آدمی عمل صالح کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے مقدس مقام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، تو اسی کی تقدس کی وجہ سے خانہ کعبہ میں جو لوگ جو ہے جاتے ہیں، وہاں ایک عمل کرتے ہیں، تو اس کا اس خیر کے جو ہے عمل کا اجر و ثواب سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 1,00,000 سے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو مہینے اور جو دن مقدس ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی مسلمان کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ ان دنوں میں آپ جو خیر کا کام کریں گے اس کا اجر و ثواب بڑھ کر کے ہوگا. جہاں ان دنوں کے اندر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے عمل کا، آپ کے نیکی کے عمل کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں اس بات کا بھی جو ہے خاص تنبیہ کی گئی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی آپ گناہ کا کام کرو گے، کوئی برائی کا کام کرے گے، تو پھر اس کا جو ہے گناہ بھی بڑھ جائے گا. یہ تو اس مہینے میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی ہے، جو لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب مسلمانوں کو بار بار اپنے گھر کا حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مہینے ہیں، جو دن ہیں، یہ خیر و برکت والے دن ہیں، اور یہ دن جو ہے مسلمانوں کو اسی بات کا درس دیتے ہیں کہ جو ہے یہ زمین، آسمان، دن جو ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے یہ پیدا کیے ہوئے ہیں. زمان بھی، مکان بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی انسان کے فائدے کے لیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ انسان اس روئے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے ہی یا لام سے مات تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے، جو جگہ ہے، مکان ہے، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. اور اس کا آپ بظاہر سے بڑا مشاہدہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں مثلا کہ اللہ تعالیٰ زمین پیدا کی ہوئی ہے، تو یہ زمین جو ہے یہ اس زمین کو خالصتاً انسانی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. خود زمین اپنے اس وجود سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، اور اس زمین سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو اسے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. और इस जमीन से इंसान के जो है अनाज उठता है, पौधे उठते हैं, तो ये जमीन इंसान के फायदे के लिए। आइए जमीन से ऊपर उठकर आसमान की बुलंदी की तरफ देखे कि वहां जो है चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये सारे के सारे चीजें मौजूद हैं, लेकिन ये सारे इंसान के फायदे के लिए है। बजात खुद इन चीजों का अपना इसका कोई फायदा नहीं होता। ये चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं और सिर्फ इंसानी फायदे के लिए पैदा की है। और इसी तरह से दिन है, महीने हैं, ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं और ये सिर्फ इंसानों के फायदे के लिए है कि इंसान इनसे फायदा उठाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो हर चीज सारी चीज इंसान के फायदे के लिए पैदा की है और इंसान को फरमाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है। ये अल्लाह ताला कुरान हकीम फरमाते हैं, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया कि मैंने इंसान और जिन को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फरमाया उरीदु मिन्हुम रिज़्क़न वमा उरीदु युत्तइमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इंसानों के सिर नहीं पैदा किया है कि दुनिया में जा करके मेरे खाने पीने का इंतजाम करे कुछ है? जो है ये कुछ खाने पीने काम में लग जाए। तो रज़ाक तो रिज़्क़ देने वाला, रिज़्क़ पहुंचाने वाला तो अल्लाह ताला है, जो जो है बड़ी ताकत और कुव्वत का मालिक है कि आपने ताकत और कुव्वत के बल बोते पर वो पत्थर में रहने वाले कीड़े को भी रोजी अता फरमा देता है, वो समुद्र की तह में भी जो है जो मछलियों को खुराक पहुंचा देता है, आसमान की बुलंदी में खुराक पहुंचा देता है। वो तो जिसको रिज़्क़ पहुंचाना चाहे तो वो हर जगह पहुंचा करके रहता है और वो रज़ाक असल में अल्लाह ताला की जात है ये। और अल्लाह ताला ने इस इंसान को फरमाया सिर्फ मेरी इबादत के लिए। और जब अल्लाह ताला की इबादत की बात आती है तो इससे मराद ये नहीं होती है कि कोई मखसूस इबादत है कि ये इंसान उस मखसूस इबादत को ही करता रहे, बल्कि इबादत का माना यह है कि अल्लाह ताला की ताआत फरमबरदारी, इस्तिस्लाम, अल्लाह ताला की ताआत फरमबरदारी करना हर हाल में अल्लाह के सामने, अहकाम के सामने सुर्ख रूह जो है अपने आप को सरनगू कर लेना, सर झुका लेना, तो यही इबादत बन जाती है। इसलिए दो सारे दुनियाई मामला जब अल्लाह की रजा के लिए करते हैं तो वो इबादत बन जाती है। तो बहरहाल ये महीने जो है आप अपने जो है ये जिलहज्जा का महीना, मुबारक महीना जो हज का महीना था, अब अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और एक दो दिन के बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा। और इस जिलहज्जा के महीने के अख्ताम के साथ ही फिर क्या होगा कि सन इस्लामी सन हिजरी का साल का अख्ताम हो जाएगा और इसके बाद जो है नया साल शुरू हो जाएगा। कि मसलन ये साल में हम इस्लामी सना हिजरी के अतबार से हम रह रहे थे 1447 में, 1447 में रह जाएंगे। और जैसे ही ज़िलहज्ज का महीना खत्म मुहर्रम शुरू होगा तो अब गोया कि हम दाखिल हो जाएंगे 1448 में। 1448 का माना सना हिजरी 1448 होने का माना क्या है कि हमारे दीन इस्लाम को इस दुनिया में 1448 साल गुजर चुके हैं, 1448 साल। और इतनी लंबी मुद्दत गुजरने के बावजूद, इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमारा दीन इस्लाम आज उसी ताबानी के साथ, उसी अजमत के साथ, उसी जो रोशनी के साथ आज मौजूद है जिस तरीके से 1448 साल पहले मौजूद था। आज दीन इस्लाम उसी तरह से महफूज है जैसे ये दीन इस्लाम पहले दिन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से पहुंचाया गया था, सहाबा तक पहुंचाया गया था, तो फिर सहाबा के जरिए से आगे ताबीन तबा ताबीन तक ये दीन पहुंचाया गया। आज वो दीन उसी तरीके से उसी शान शौकत के साथ महफूज है। इस दीन के अंदर कोई जरा भी जरा जेर जबर की तब्दीली नहीं आई है। और यही वो दीन इस्लाम की आजमत है जो ये बताती है कि इस दुनिया में इस दीन जो है वो हक दीन हक इस्लाम ही है, हक दीन हक इस्लाम ही है। इस्लाम फरमाया कि बेशक दीन अल्लाह ताला का इस्लाम है और वही दीन हक है। और इसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे दीन और मजाहिब है जो वक्त गुजरने के साथ जो 100 साल के अरसे में 2 साल के बाद उनका तहरीफ हो जाती है, तब्दीली चेंजिंग हो जाती है। और इसी वजह से दीन ईसाइत के दीन को देखो, यहूदियत के दीन को देखो, और सबको देखो कि चंद अरसा गुजरने के बाद उसके अंदर जो है तहरीफ हो गई है, तब्दीली हो गई है। लेकिन आज ये दीन इस्लाम वो दीन है कि 1447 साल गुजरने के बावजूद आज पूरी अजमत के साथ कायम है। और दीन इस्लाम के साथ मुसलमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस्लाम की शान शौकत अदद के लिहाज से, अदद के ताकत कुव्वत के लिहाज से, तादाद के लिहाज से दीन इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मशरक से मगरब तक, मगरब से मशरक तक, जनूब से शमाल, चारों तरफ दीन इस्लाम बढ़ता जा रहा है। और लोग मुख्तलिफ कौमों से, मुख्तलिफ मुल्कों से आज वो जो है उठ करके वो ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हमारी निजात, हमारी कामयाबी सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर है। यही वो दीन इस्लाम की हजमत हकानियत है। इसके ऊपर मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि मुसलमानों, अल्लाह ताला ने हमें इस दीन इस्लाम में अता किया, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आज भी इस उम्मत में खैर है, आज भी उस उम्मत के मानने वाले आज इसी आजमत के साथ मौजूद है, पहले दिन के साथ जैसे थी। आज भी मुसलमानों को अपने दीन से, अपने नबी से बेपरवाह मोहब्बत है। सब चीजों से ज्यादा अपने दीन से, अपने नबी से, इस्लाम से मोहब्बत है। ये तो ये चीजें ये क्या बताती हैं, ये इस्लाम की हकानियत के सबूत है। इस बार मुसलमान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये आज तक नहीं, क्यामत तक के लिए ये दीन ऐसे ही रहेगा, बढ़ता रहेगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यामत से पहले ये दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर रहेगा। फरमाया ये दीन इस हर घर में दाखिल हो जाएगा। घर वाले अगर उसको इज्जत से कबूल कर लेंगे तो ये दीन इस्लाम को इज्जत देगा। और लेकिन अगर इस दीन इस्लाम आया, घर वालों ने इस इस्लाम को इज्जत से कबूल नहीं किया, कि ताकत कुव्वत के बलबोते पर, कहीं रूहानी ताकत की कुव्वत पर, कहीं दलाल के कावत को ताकत कुव्वत पर, कहीं रोशनी की ताकत कुव्वत पर, ये हर कच्चे पक्के घर में दाखिल हो जाएगा। और घर वाला जो है उसको जलील कर दे, उसको दीन इस्लाम जलील करके दाखिल हो जाएगा। यानी वो नहीं चाहता था कि इस्लाम की आवाज सुने, लेकिन इस्लाम दाखिल हो गया फिर उसके घर में। और यही देखते हैं कि आदमी ना चाहते हुए उसके खानदान में, उसके औलाद में लोग मुसलमान हो गए। तो ये सारी चीजें मुसलमानों यही बताती हैं कि ये दीन इस्लाम दीन हक है ये, और ये दीन इस्लाम कायम है और क्यामत तक के लिए रहेगा। इसमें क्या किसकी का जो है खूबी है, किसी ताकत तो कुव्वत है, ये भी याद रखें, इसमें किसी मुसलमान की कोई ताकत कुव्वत नहीं है, किसी मुसलमान की कोई इसमें जो है उसकी कुछ कामयाबी या मुसलमानों की नहीं, कोई चीज में मुसलमानों के नहीं है। दीन इस्लाम फैल रहा है अपने बलबोते पर, फैल रहा है कि अल्लाह का दीन है, अल्लाह तबारक व ताला जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं तो फिर दीन इस्लाम उसके सीने में दाखिल हो जाता है, उसके नूर को मुनव्वर कर देता है। ये तो ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह ही जिसको चाहते हैं अल्लाह उसको हिदायत देते हैं, सीने में इस्लाम खोल देते हैं। तो मुसलमानों का इसमें कोई कमाल नहीं है इसमें कि मुसलमान ये समझें, बल्कि इस वक्त अगर आप देखेंगे कि इस दुनिया में कितने बहुत सारे मजहब और दैन हैं, यहूदियत ईसाइत के अलावा बुद्धिस्ट है, और इसके अलावा जो है और कितने हैं, लेकिन तमाम जो मजाहब है उसके फैलने के पीछे, उसके पीछे जो है जो पावर ताकत कुव्वत है, सियासी ताकत कुव्वत है, मुल्की ताकत कुव्वत है, ईसाइत है, एक मुनज्जम तरीके से उसको फैलाया जाता है, यहूदियों को फैलाया जाता है, और जो मजाहब है कि उनके पीछे एक हुकूमती मशीनरी लगी हुई है, लेकिन एक सर इस्लाम वहदहू है, वहदहू ला शरीक, उस अल्लाह का ये दीन एक इस्लाम है। इस्लाम के पीछे किसी का सरमाया नहीं, किसी की ताकत कुव्वत नहीं, बल्कि सद अफसोस अफसोस के आज इस्लाम का नाम लेने वाले वो इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो इस्लाम को रोकने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ये कहीं हमारे मुल्कों में ना फैल जाए। तो लेकिन इसके बावजूद इस्लाम के फैलाने में किसी की ताकत कुव्वत नहीं, किसी का इसमें कोई जोर नहीं है, صرف یہ دین اکیلا دین اپنی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کی منشا سے جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پھیر رہا یہ دین اپنی حقانیت کی بنیاد پر، اور جو ہے یہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے رضا اس کے مطابق یہ پھیر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہم نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی ہم حفاظت کریں گے. دین اسلام قرآن دین اسلام ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہی دین اسلام ہے، قرآن سے ہٹ کر کے کوئی دین نہیں ہے. تو دین اسلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اور اس دین اسلام کی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کو ہم نے ہی اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. اس لیے دنیا میں بے شمار کوششیں ہونے کے باوجود، قرآن کی توہین کرنے کے باوجود کیا کیا ہیلے کر رہے، لیکن قرآن آج بھی موجود ہے، قرآن آج بھی آج دنیا کے اندر اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، آج بھی ایک جو ہے روشن مینارے کی طرح سے تو قرآن موجود ہے، اور دن بے دن اس قرآن لوگوں کے سینوں میں اتر رہا ہے، لوگوں کے سینوں کو منور کر رہا ہے. تو یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسی وجہ سے دین قائم رہے گا اور یہ پھیلتا رہے گا. اس میں کسی کا کوئی طاقت قوت نہیں ہے کہ فلانے کی حکومت ہے فلانے کا، یہ کسی کا کوئی کچھ نہیں ہے. دین اسلام جیسے آج ایک غریب کے جو ہے دل میں داخل ہو رہا ہے اسلام، اور اس کی جو ہے بے چینی کو چین سکون سے بدل رہا ہے، ایسے امیروں میں بھی پھیل رہا ہے. دین اسلام کوئی تشخیص نہیں ہے، امیر ہے غریب ہے کالا ہے گورا ہے، اسلام میں سارے اللہ کے بندے ہیں، اور اسلام جو ہے سب کے لیے سب کا دین ہے، اس کے اندر کوئی قومیت نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی کچھ نہیں آئی. تو مسلمانوں اس سارے حالات کی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ کتاب جس دین کی تفسیر کر رہی ہے الاسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بس صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. اور اسلام کا معنی ہی ہے کہ دنیا کے اندر سلامتی، اسلام کا معنی ہے استسلام، کہ آپ اللہ تعالیٰ احکام کے سامنے آپ جو ہے جھک جائیں. اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف اللہ کا غلام ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا یہ انسان غلام نہیں ہے، جبکہ دنیا کے جتنے نظام ہیں وہ انسان کو غلام بننے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں جتنے سیاسی نظام ہیں، دنیا کے اندر جتنے کسی نظام سے جو نظم چل رہے ہیں، جو منظمات ہیں، سب کا ایک ہی کوشش ہے کہ انسان کو دوسرے انسان کا غلام بنا دیا جائے، چاہے حاکم کی صورت میں، چاہے بادشاہ کی صورت میں، چاہے طاقت قوت کی صورت میں، سب کا یہ کیوں ہے. لیکن دین اسلام ایک دین اسلام ہے جو یہی نعرہ لگاتا ہے کہ انسان یہ آزاد ہے، اس کا جو ہے یہ صرف اور صرف بندہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور انسان کوئی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، کالا گورا جو ہے سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور یہ سارے اسی کے بندے ہیں، اور سارے اسی کے جو ہے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور اس اللہ نے جو آخری دین دے کر اور تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، سارے اسی نبی کی امتی ہیں. تو برابر یہ برابری یہ بتایا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس سال کے اندر جو ہم سے گناہ غلطیاں اللہ معاف فرما دے، جو خیر کے کام ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان خیر کے کام کو قبول فرما لے، اور آنے والا سال اللہ تعالیٰ یہ رحمتوں برکتوں والا سال بنا دے. اور محرم کا مہینہ کا معنی بھی یہی ہے کہ حرمت والا عزت والا مہینہ ہے، یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے. یہ غلط لوگوں نے بات پھیلا دیا ہے، جہاں بہت ساری غلطیاں پھیلائی ہیں. تو مسلمانوں محرم کا مہینہ عزت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے. ہاں اس محرم کے مہینے کے اندر بہت ہماری عظیم شخصیات کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور عمر کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے، اور صحابہ کی حسن اور حسین کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی ہے. لیکن شہادت اسلامی فلسفے میں یہ ایک عظمت ہے، مرنا تو سب کو ہے، اور کسی کی شہادت نہ ہوتی کیا آج تک وہ زندہ رہتا ہے؟ کوئی مرنا تھا ہی. तो मरना मौत हर के, लेकिन मौत शहादत की सूरत में आ जाए तो वो अजमत होती है, ना ये कि वो नहुसत होती है और इसको उन दिनों के महनूस बना दिया जाए। तो ये वो इस्लामी तालीमात ना समझने की वजह से, जहालत की वजह से, फिरका परस्ती की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर गलत चीजें पैदा हो गई हैं। इस्लाम इनसे बरी है। तो इस्लाम अल्लाह का अजीम दीन है जो ये दुनिया के अंदर मोहब्बत उल्फत फैलाने के लिए आया है। दीन इस्लाम जो है इस बात का भी नहीं जो है तालीम नहीं देता है कि अगर दूसरा कोई आदमी आपके मजहब का खिलाफ हो, आपके अकीदे के खिलाफ हो, तो आपको जुल्म और सुतम करे। नहीं, इस्लाम कहते हैं ये सारे लोग अल्लाह के बंदे, आप आपके साथ हर एक के साथ आप इज्जत से पेश हैं, हर एक को फायदा पहुंचाएं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों में सबसे वो बेहतर आदमी है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, चाहे किसी किस्म के लोग हों, कैसे भी लोग हों। तो दीन इस्लाम यही चाहता है आपसे कि आप सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, यानी उनकी ताबेदारी आपने करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया जो तालीम, उस तालीम को आपने मानना है। और जो है इस दुनिया के अंदर किसी को कोई जो है अजमत और जो हासिल नहीं है, कोई इज्जत वाला नहीं है, कोई जिल्लत वाला नहीं है। फरमाया अकरमकुम, हाँ इस दुनिया में अगर किसी को कोई इज्जत हासिल आती है तो उसको जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, और मुत्तकी का माना मैंने अपने अकीदे के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से, अमल के लिहाज से, जो अल्लाह ताला से सबसे डरने वाला है, और वो उसकी भी गारंटी जो है कहा को अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला दे सकता है, वो खुद किसी इंसान को नहीं कह सकता मैं दूसरे इंसान से मुत्तकी होने के वास्ते मैं अफजल बन गया हूँ। ये सारे इंसान बराबर है, और दीन इस्लाम जो है ये सबके लिए खुला हुआ है। दीन इस्लाम किसी कौम का नहीं है, ये अल्लाह का दीन है, और सारे बंदों को इस दीन इस्लाम की दावत है। इस्लाम की इस रोशनी में आ जाओ, लोग आ रहे हैं यहाँ जिसकी तालीमात हासिल कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आने वाले दिन हमारे मुबारक बनाए। और इसी मुनासिबत से ये भी, चूंकि मेरा कश्मीर से ताल्लुक है, कश्मीर से होकर आया हूँ, और वहां आजकल के काफी हालात आप लोगों को नहीं पहुंच रहे मीडिया के जरिए से, लेकिन कश्मीर के अंदर कोई ऐसी तहरीक नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या इस्लाम के खिलाफ हो। याद रखें जो लोग ये बातें करते हैं कि वहां लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, या लोग इंडिया से मिलने चाहते हैं, ये सब झूठा प्रोपोगंडा है, झूठा प्रोपोगंडा है। ये वहां के लोग सिर्फ जुल्म के खिलाफ है, और वो जुल्म सिर्फ कश्मीर में भी हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, वो जालमाना निजाम के खिलाफ है। ये मखसूस तबका इस मुल्क के खजाने का लूट रहा है, ये मखसूस तबका जो इदारों के नाम से एक कौम बन चुकी है, कबीला बन चुका है, और एक इदारे इदारा है, और उसके साथ जो मनसूब है उनके लिए सारे मुल्क के खजाने मौजूद है, लेकिन वहां आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए कोई सहूलियत हासिल नहीं है। और यही कश्मीर के अंदर यही हाल है कि आज 70 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, तो आज उस कश्मीर के नाम से पैसा लूटा जा रहा है, उसके बजट को पाकिस्तान के जो पार्टियां जहां पाकिस्तानी पर जुल्म कर रहे हैं, वहां कश्मीरियों पर उस तरह जुल्म करते हैं, अपने लोग पैदा करते हैं, और उनको उनसे रिश्वतें लेकर के जो है कश्मीर की सीटें देते हैं, उनके मिनिस्ट्रियां देते हैं, और फिर वो पूरा साल या उस अरसे के अंदर वो कश्मीर के बजट लूट करके इनको देते रहते हैं। कोई लाडकाना में दे रहा है, कोई लाहौर में दे रहा है, कोई रायगढ़ में दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है। ये सब लोग इस मुल्क के, पाकिस्तान के आवाम के दुश्मन है, और वही लोग कश्मीर के आवाम के दुश्मन है। ये उस मुल्क को खजाने को लूट रहा है। ये तो ये एक इस्तेमारी ताकत और कुव्वत है, उसके खिलाफ वो लोग उठे हैं और बड़ा उन पर जुल्म हुआ है। तो आप उन पर तरह तरह की ये बातें की जा रही हैं जो कि कतन इस बात की, वो ना को कश्मीरी है, सारे मुसलमान है, वो इलाके के लिहाज से कोई तकसीम नहीं कि पाकिस्तानी है कश्मीरी है, पाकिस्तानी हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, हर पाकिस्तानी कश्मीरी है। ये कहाँ करके इस मुल्क को आपने जो इस तरह से कर दिया, ये खास तबका है ताकत और कुव्वत की बुनियाद पर पाकिस्तान के खजाने लूट रहा है। उसी ताकत कुव्वत की बुनियाद पर वो समझता है कि मसाइल जो दूसरे जो जो लोग गरीब हैं, जो हक लूटते हैं, उनको ताकत दबा दिया जाए, और यही करके आपने पाकिस्तान को चारों तरफ से दुश्मनों में घेर दिया है, चारों तरफ से आपने पाकिस्तान को गैर महफूज बना दिया है। ये कौन वो लोग हैं जो सिर्फ समझते हैं कि लाठी की ताकत तो कुव्वत है, उसकी बुनियाद पर ये कर रहे हैं। तो ये बात जो है मैं समझता हूँ कि जो हमारे वो भाई हैं मुसलमान, हर मुसलमान भाई है, और जो भी मुल्क में रहने वाला है उसके पूरे हकूक है, तो इस वजह कोई तकसीम नहीं की जाती है कि ये फलाना है और ये फलाना है और ये फलाना है, और इसके झूठे नारे लगा दिए जाते हैं, ये जो एजेंसियां ये करती हैं और आवाम के दुश्मन ये लोग करते हैं, तो हकूक जो है लिए जाते हैं। अरबी में एक मसाला दुनिया तू खजो गिलाबन ताकत कुत, इतने अरसे से लगे हुए, क्या हाल है कश्मीर के अंदर में आ गया ना, वो सड़कें हैं, सिर्फ जो जलजला आया था उस जलजले के जो पैसे हैं वो भी लोग खा गए, वो भी जो जो हमारे अरबाब इख्तियार थे वो भी खा गए, थोड़ी जो सड़कें बनी हैं आज तक वो सड़कें दोबारा नहीं बनी है, टूटी सड़कें हैं, ना कोई अस्पताल है ना कुछ है। इसी वजह से आप लोग ये देखेंगे कि सारे जो कश्मीरी जिनके पास थोड़े से वसाले होते हैं सारे पिंडी इस्लामाबाद में क्यों जाते हैं, क्यों बोझ पड़ चुका है इसके ऊपर, इसलिए कि वहाँ कश्मीर में कोई वसायल नहीं है, ना कोई तालीमी इदारा है, ना कोई वहाँ जो है ऐसा जो है कोई जो रोजगार का जरिया है, ना कोई हॉस्पिटल है, वहाँ कोई कुछ नहीं है वहां पर। ये तो कश्मीरी लोग वो जो है कश्मीर का इलाका वो मजलूम है, और वैसे ही मजलूम है जो बलोचिस्तान वाले यही कह रहे हैं और केपी वाले यही कह रहे हैं, तो इस मुल्क का आप क्या बनाएंगे, यही करके आप लोगों ने बांग्लादेश को अलग कर दिया, आज फिर वो ताकतें काम कर रही हैं। इसे हर पाकिस्तानी को सोचना चाहिए, हुकूक की बात है, ये जालिमान निजाम के खिलाफ है, ये कि जुल्म बंद होना चाहिए और हर आदमी को उसको हक उसका मिलना चाहिए। तो ये चंद गुजारिशात थी, अल्लाह ताला हमें अपने हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो दाखिली खारिजी खतरा से उसकी हिफाजत फरमाए, और जो लोग भी किसी तरीके से बाहर की एजेंसियों किसी अपने मुल्क के नुकसान की बातें करते हैं, अल्लाह ताला ऐसे हाथों को अल्लाह ताला तोड़ दे, ऐसी जबानों को अल्लाह ताला कुंग कर दे जो ऐसी बातें करते हैं। हम आखिर में अव्वल आखिर पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, और सिर्फ ये जो है कोशिश करते हैं कि हर आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारा कश्मीर हमारा पाकिस्तान है, उसमें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ खैरात रखी हुई है, और अब यहाँ आकर पता चलता है कि हमारा मुल्क कितना अच्छा मुल्क है, अल्लाह ने कितने खैरात रखी है, लेकिन चूंकि वहां का निजाम जालिमाना निजाम है, लुटेरा निजाम है, वहां सारे चोर निजाम के अंदर बैठे हुए मशीनरी के अंदर जितने लोग हैं, तो इसलिए उन्होंने उस मुल्क को जहन्नम बना दिया है। तो अल्लाह ताला हमारे सब की हिफाजत फरमाए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। यूं तलअल बद्रु अलैना दफ के साथ पहली नाक ठहरी। इसी मोहब्बत और अकीदत को मद्देनजर रखते हुए दफ के साथ नजराना अकीदत बहजूर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश खिदमत है।

0: एक मंडे को खैसली ताबलग में आ रहा है, जिसमें मैंने एक ये एनालिसिस लिखे हैं सोशल डेमोक्रेट पार्टी के ऊपर। पहले वो क्या थी, अब वो क्या हो गई है। अब मैं इसको आपको बारे में बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि अभी नई हुकूमत बनी है। नई हुकूमत जब बनी है तो उसमें बहुत सारे नए मिनिस्टर्स आए हैं, वो तो एक चीज है, लेकिन हर हुकूमती पार्टी के अंदर भी के स्पोक्स पर्सन हाउसिंग का कौन होगा, स्पोक्स पर्सन हेल्थ का कौन होगा, स्पोक्स पर्सन माइनॉरिटीज के हवाले से कौन होगा, ये भी सारी चेंज आई है। इसमें सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी है उन्होंने एक नया बंदा चूज किया है जिसका नाम है थॉमस क्यू येंसन। और थॉमस क्यू येंसन ने अभी बनते साथ ही एक इंटरव्यू देते हुए डीआर डेडलाइन में ये कहा, उससे ये पूछा गया कि डेनमार्क में 3 लाख मुसलमान बसता है, क्या आपके ख्याल के मुताबिक ये टू मच है, ज्यादा है? तो वो कैमरे में देख के कहता है हाँ ज्यादा है। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, ताज्जुब हुआ कि ये कभी मोन्स क्लिस्टोप और पी एखियास को इस तरह की बातें करते थे। क्या ये हालात आ गए कि सोशल डेमोक्रेट अब इन मुसलमान की फकत वजूद पे ही उनको इतराज है? तो इसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस लिखे, मैंने सोचा इस पर कि ये क्या हुआ कि ये पार्टी, वो पार्टी सोशल डेमोक्रेट पार्टी जो बनी इसलिए कि जब सरमायादार जो था वो कहता था, ओए तुम लोग जो हो वर्किंग क्लास हो तो तुम्हारी अहमियत नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप वर्किंग क्लास हैं तब भी आपकी अहमियत है। जब यहाँ पे जितनी भी अकलियतें हैं, जितने भी लो तबका था, उसको इस पार्टी ने, उनका आइडियोलॉजी ये थी कि इंसान को आप उसकी हरकतों पे जज करते हैं, उसके बैकग्राउंड पे नहीं करते, उसके एथनिक बैकग्राउंड पे नहीं करते, उसके किस क्लास से है, किस तबके से है, इस पे नहीं करते। तो ये पार्टी बनी और इसने इतना उरूज देखा और इतनी ये बड़ी हुई, आज भी इनका प्राइम मिनिस्टर है, इनकी प्राइम मिनिस्टर है। तो ये पार्टी की क्या हुआ इस पार्टी में कि आज ये नहीं कह रहे कि 3 लाख क्रिमिनल मुसलमान है वो नहीं हो सकता, या 3 लाख एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट हैं वो नहीं हो सकते। नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुसलमान है, सिर्फ इनकी गलती ये है कि ये मुसलमान है, इस वजह से ये नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा चेंज आया इनकी आइडियोलॉजी में। इसके ऊपर मैंने एक लंबा एनालिसिस लिखे हैं और वो कौमी अखबार में अभी आएगा मंडे के रोज, आप जरूर पढ़ना और शेयर करना। और इसके ऊपर आप देखें कितना बहुत बड़ा चेंज आया है कि वो ये नहीं कह रहे कि 3 लाख क्रिमिनल्स हैं तो वो इसलिए ज्यादा है तो वो नहीं होने चाहिए, या टेररिस्ट है, नहीं, कहते हैं कि 3 लाख मुसलमान, तो यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप ये एक जुर्म बना के पेश कर रहे हैं। ये कभी इस तरह सोशल डेमोक्रेट पहले नहीं होती थी। तो ये बहुत बड़ा कि इनमें चेंज आया है। इसके ऊपर एक हमने बहस जो है एनालिसिस लिखे हैं और कॉलम लिखा है, तो उम्मीद करता हूँ इस पर बहस होगी, सियासी बहस होगी। और आपको पता है कि फिर ये अपने दिफा में बोलेंगे करेंगे। अभी पहली मेरी इनकी जो नया जो ये वो लेंगे ओफिया बना है थॉमस की, वही इसके साथ मेरी एक आप समझ लें एक सियासी क्लैश हुआ है। और हमने मतलब वो लिखा है, उसने लिखा आगे, मैंने उसका जवाब दिया, फिर उसने लिखा, तो अब मैंने ये कॉलम लिखा, आप देखें आप आगे क्या रिएक्शन होता है। तो बहरहाल मैं हाईलाइट ये करना चाह रहा हूँ कि ये बुनियादी फर्क आया इनमें कि कभी ये बने ही इसलिए थे कि किसी का बैकग्राउंड जो है ना वो उसको क्वालिफाई या डिसक्वालिफाई नहीं करता, आपके एक्शंस करते हैं। लेकिन आप मुसलमानों के हवाले से कहते हैं डजंट मैटर, अच्छा है बुरा है, बस मुसलमान है, 3 लाख नहीं बहुत ज्यादा है, नहीं होना चाहिए।
1: चले सिकंदर, हम एक बात है अभी बाहर नहीं करते, एक चूंकि खबर है, जब तक खबर ये आएगी नहीं, जो हमारी मुलाकात होने जा रही है तो मुलाकात करेंगे, ये सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब पहले बात करते थे मुसलमान की बात होती है, फॉरनर की बात होती है, तो थोड़ा सा फ़र्क रखा जाता था। अब ये जब बात करते हैं, अब स्वीडन में इलेक्शन हो रहे हैं सेप्टेम्बर में, तो वो उनकी पार्टी जिस तरह डैनिश पीपल्स पार्टी है, अब उन्होंने गैर मुल्कियों को निकाल दिया, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब डेनमार्क में भी हो रहा है कि गैर मुल्की की बात नहीं की जाती, मुसलमानों की बात की जा रही है, ये दोनों चीज़ें बराबर क्यों नज़र आ रही हैं?
0: ये अनफॉर्चुनेटली यही मैं समझता हूँ जो आपने बात अभी बढ़ाई आगे, ये बेसिकली मेरे एनालिसिस का सेकंड जो स्टेप है वो यही है कि पहले रेसिज्म होती थी कलर पे, पहले रेसिज्म होती थी आपकी क्या कहते हैं जो एक आप जिसे कहते हैं गासे पे, ये अभी भी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इनको इतना इस्लामोफोबिया हो चुका है इस सिस्टम को।

0: लोगों को इस मतलब लोगों से मराज, जो एक पॉलिटिकल इलीट है, कि इनको अब मुसलमान और इस्लाम के अलावा कुछ चीज नजर नहीं आती। अब अगर आप जो इस वक्त इन्होंने जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट फॉर मेंस की खारिजा जो है, उन्होंने एक सर्वे किया, तो उसमें ये डेनमार्क का सबसे बड़ा सर्वे इस हवाले से, उसमें ये सामने आया कि 8 में से 10 जो मतलब माइनॉरिटीज हैं, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो है वो फील करते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेट होते हैं। 8 में से 10, अंदाजा लगाएं, यानी 10 बंदों में से 8 लोगों ने कहा है कि हम ये फील करते हैं, इस सर्वे में बता दिया। उसके बाद आप देखें कि जितनी भी इस वक्त जो कानून साजी होती है वो सब माइनॉरिटीज के लिए नहीं होती, वो स्पेसिफिकली उसमें मुसलमानों का नाम लिया जाता है कि मुसलमान इशू है। देखे ना, अभी मेरे पिछले दिनों भी डिबेट चल रही थी, उसमें इसने मैंने जब यही बात की, मैंने कहा कि आप सोचे जरा कि किसी सियासतदान ने टीवी पे, अब आप सब लोग ना आंखें बंद करके इसी तसव्वुर करें कि यही सियासतदान जिसने मुसलमानों के बारे में ये कहा है, ये उसी टीवी पे बैठ के कहता कि मैं समझता हूँ यहाँ पे 3 लाख यहूदी है और ये टू मच है, नहीं होने चाहिए। आप जरा सोचे कि क्या हशर मच जाना था, सबने कहना था कितनी तो घटिया बात की है, लेकिन आप ये देख लें कि अब मुसलमानों के हवाले से बात हो रही है तो कोई भी नहीं कह रहा। इसलिए ये अब आप स्वीडन में भी देखें, जर्मनी में भी देखें, फ्रांस में भी देखें, बेलफास्ट में जो हो रहा है आपने देखा पिछले दिनों की, वहां लोगों को घरों को आग लगा के लोगों को भागना पड़ रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हालात ऐसे हैं, और मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि हमें भी, जितने भी हम माइनॉरिटीज हैं, हम इस मुल्क के का हिस्सा है, हमें इस मुल्क से मोहब्बत है, प्यार है, हम इधर ही रहते हैं, हमारे बच्चे भी इधर रहते हैं, हमें भी अपनी पॉलिटिकल आवाज जो है उसको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, और ये मस्कीनों वाली सियासत जो है इसको अब छोड़ देना चाहिए।
1: सिकंदर, आप हमेशा बात करते हैं मस्कीनों वाली सियासत छोड़ देनी चाहिए, चलिए इस पर लंबा प्रोग्राम करेंगे। तो आज जिस सिलसिला में आप गए हुए थे बहनाल, तो सियासी पार्टियों के डेफिनेट लीडरान से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, रश भी होगा, तो इसमें से आपने क्या हासिल किया?
0: देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि मैं, इसका नाम तो है फॉल्केमल, लेकिन मैंने भी इसके ऊपर एक पोस्ट भी बनाई है पिछले दिनों, ये फॉल्केमल नाम गलत है। फॉल्केमल का मतलब होता है पीपल की मीटिंग, लोगों की मीटिंग, इसका नाम रखना चाहिए इलीट टू इलीट की मीटिंग, क्योंकि ये ऐसा ऐसी जगह है, ऐसी मीटिंग है जिसमें सारे सियासतदान, सारे लॉबी करने वाले लोग, सारे एस्टेब्लिशमेंट, सारी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे जो है इन्होंने अपने एक आयरलैंड पे, ये होता है ना कि आपने कोपेनहेगन में रखा है कि हर बंदा पहुंच भी सके, ये इन्होंने जो पर्नहॉल में एक आयरलैंड पे रखा हुआ है, इधर ये सारे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत होती है, और ये मैं समझता हूँ एक इलीट क्लब है। तो इसमें यही है कि हम जब जाते हैं तो जाहिर बात है यहाँ पर लोग होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन लोग नहीं होते, मतलब यही जो सियासतदान और
1: सियासी गुरु कह सकते हैं।
0: तो बात बार यही है कि इसीलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एज ए सियासतदान इसलिए होना जरूरी है कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे सारे खड़े होते हैं, यहाँ पे बड़ी बातचीत होती है, लोग मिलते हैं, ऐसे सियासतदान दूसरे मुल्क के, दूसरे जो जो मुल्क के हिस्से हैं उनके सियासतदान सबसे बातचीत होती है, डिबेट होती है। लेकिन वैसे मैं ये जरूर कहूंगा, ये मैंने भी इसमें कहता है लिखा भी है कि ये है लोगों के लिए नहीं, ये नाम गलत है, ये इलीट क्लास के लिए ये जो है मेला सजाया जाता है।
1: सिकंदर, आप कोपेनहेगन पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आखिर में अपने लोगों को आप क्या पैगाम देंगे?
0: मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि आप लोगों ने बेलफास्ट में देखा क्या हुआ है, अब वहां पे हालात बहुत खराब हो चुके हैं, और वहां पे भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा जब हर लोग बंदा कहता है कि वो यार वो तो बेलफास्ट है, यहाँ डेनमार्क में तो नहीं हो सकता, तो बेलफास्ट के शहरी हैं, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है कि लोग जो है वो आपको घरों से निकालेंगे और आपके घरों को आग लगाएंगे, आपकी गाड़ियों को आग लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज एक, मैंने सोचा कि ये गरीब तबका, वर्किंग क्लास तबका, लो मिडिल क्लास तबका, वो जो गोरे हैं उनको इन्होंने उकताया हुआ है, उन्होंने उनको इन्होंने वो बहकाया हुआ है, और वो अब उन मुसलमानों के माइनॉरिटीज के खिलाफ है, जबकि कोई इन बदबख्तों को कहे कि आपके दुश्मन आपका नेबर नहीं है, गरीब आदमी या वर्किंग क्लास आदमी का घर जला रहा है, और जो ऊपर इलीट बैठी है वो देख रही है तमाशा। काश इनको ये कोई बताता कि आप वर्किंग क्लास से हैं, आप मिडिल क्लास से हैं, चाहे आप गोरे हैं या काले हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, आप लोग इत्तेहादी हो। आप लोगों के घर में अगर आपका चूल्हा भी नहीं चल रहा मुश्किल से, इधर भी वही हाल है। ये आपके नेबर की गलती नहीं है, ये जिसका नाम मोहम्मद है उसकी गलती नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर जो लीड बैठी है, जो सियासी फैसले कर रहे हैं, ये उन लोगों की गलती है। एक दूसरे से लड़ना आप छोड़ो, एक दूसरे के आप हो, एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे के साथी हो। काश इन चीजों को समझ आता थी, क्योंकि ये इलीट हमेशा ये करती आई है डिवाइड एंड रूल। तो ये बताती है, ये एक गरीब को या एक मस्कीन को या एक मिडिल क्लास बंदे को कहती है कि देखो उसकी वजह से ये हो रहा है, जबकि उसका भी यही मसला है। आप लोग एक अलायंस बनाओ और इलीट से अपना हक मांगो, मैं यही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: चलते चलते एक बात आपसे पूछ लूं, जो आप पार्लियामेंट के जो है नेशनल पार्लियामेंट के भी मेंबर रहे, कोपेनहेगन की पार्लियामेंट के आप मेंबर हैं, तो सिकंदर आप बताएं कि जिन ममालिक में लोग रहते सियासी पनाह ली हो, तो उनकी तो डेमोंस्ट्रेशन करना कोई बंदे को बात नजर आती है सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे। जिन लोगों के पास परमानेंट रिहाइश होती है, डैनिश पासपोर्ट होता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट होता है, ब्रिटिश पासपोर्ट या नेम्ड किसी का भी मुल्क का पासपोर्ट होता है, उन मुल्कों में रह कर जो है वो सियासी पार्टियों को गालियाँ देना, जो पासपोर्ट लिया हुआ है उस पासपोर्ट के बारे में बहुत सारे सख्त लफाज इस्तेमाल करना, तो क्या ये कानून इजाजत देता है? अगर यहाँ डेनमार्क में कोई डैनिश पासपोर्ट के बारे में बात करना शुरू कर दे और रहता यहाँ हो।
0: देखिए मैं समझता हूँ ये भी एक मुनाफ़कत ही है। फिर आप अगर आपको देखिए सियासी क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म, उसमें कोई मुझे इशू नहीं लगता। मैं खुद यहाँ पे एक सियासत को और जो उसको क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन एक पासपोर्ट को, एक मुल्क को, एक झंडे को जिसमें आप रह रहे हैं, जिसके आप शहरी हैं, उस क्या कहते हैं जमीन को, मिट्टी को और नुकसान पहुंचाना या क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूँ मुनाफ़कत है और गलत बात है। जिस तरह की हम पाकिस्तानी रूट से हमारे हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, इसी तरह डेनमार्क हमारा मुल्क है, हम इससे भी मोहब्बत करते हैं। तो ये है कि आप क्रिटिसाइज करें, आप सियासत को क्रिटिसाइज करें, सियासतदानों को क्रिटिसाइज करें, आप एक मुल्क को, पासपोर्ट को, एक जमीन को ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सामान नाजरीन, ये थे मलिक सिकंदर सदीक जो कि बहन हाल में गए हुए थे फलके म्यूज में, तो उनसे हमने बर रास्त बातें की। सामान नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहता है और अपनी राय देना चाहता है उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है। सामान नाजरीन हमारे साथ साथ रहिएगा,
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: कोई अपनी राय देना चाहे किसी भी जमात का हो तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज का टाइम हाजिर। अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
0: सामान्य नाजरीन, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देनी है जो आपके साथ भी शेयर करेंगे। हमारा हमेशा वादा रहता है हमारे साथियों का, दोस्तों का, जो अपनी गहरी नजर रखते हैं ब्रेकिंग न्यूज पर, मसाइल पर, सहूलियात पर। तो सामान्य इस वक्त हमारे मोहतरम हाजी असलम मेहर साहब सीनियर साफी हैं, हम एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं। हाजी साहब आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर।
2: शुक्रिया जनाब राजा गफूर साहब, रेडियो चैनल, टीवी चैनल, आपकी आवाज, ये बेलौस अपने अवाम को खिदमत के जज्बे के साथ इंटरनेशनल मालूमात और मुकामी खबरें और पाकिस्तान और जहां जहां से भी हमें मुफीद बातें मिलती हैं हम अपने सामईन तक पहुंचाना इसे सदका समझते हैं। और मुझे अभी ये खबर मिली है कि मालमो के अंदर रिहाइश पजीर जो तालब इलम बच्चे अपना हाई स्कूल मुकम्मल करके यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में दाखिला लेंगे 2 माह की छुट्टियों के बाद, यहाँ छुट्टियां हो चुकी हैं और ये 15 साल से 22 साल के बच्चे जो हैं इनके लिए जैसे शीलैंड है कोपनहेगन और मालमो भी इसका एरिया इलाका जो है वो पूरा उनके लिए इन तालिब इल्मों के लिए बच्चों के लिए मालमो की जो कम्यून है जो स्टेट है हकूमत है उन्होंने इन्हें 2 माह के लिए इन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड उनके घरों में पहुंचा दिया है। ये 2 माह तक 24 घंटे यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है स्टेट की हकूमत की बल्दिया की ये उसके अंदर ये मुफ्त सफर कर सकते हैं, 24 घंटे सफर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ बाहर पिकनिक मना सकते हैं, सैर कर सकते हैं, जहां इनका दिल करे गार्डन बाग उसी जगह पर जाकर अपने दोस्तों के साथ कोई हॉबी कोई मशगला फुटबॉल एक शहर से दूसरे शहर तक। और ये काफी मालमो का एरिया काफी बड़ा लंबा चौड़ा है ना, हेल्सिंगबोर्ग इनका एक शहर है वहां से लेकर अराउंड अबाउट जितना भी मालमो का। तो ये एक खबर थी जो हम शेयर कर रहे हैं। हमने इससे पहले सामीन एक बात उठाई थी कि जी बहुत सारे मुल्कों में पेंशनिस्ट और तालिब इलम जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके लिए पास का इजरा जो है, मेरे बच्चे जब छोटे थे जब यहाँ डेनमार्क में ये तालीम के लिए स्कूल जाते थे तो इनको फ्री कार्ड दिया जाता था, लेकिन इनको अब पैसे अदा करने पड़ते हैं स्कूल जाने के लिए, वो पास बनवाते हैं या टिकट लेते हैं। हमने ये बात उठाई थी कि जी इन बच्चों के लिए और पेंशनिस्ट जो आदमी हैं बूढ़े आदमी हैं डैनिश हैं गैर मुल्की हैं जो भी हैं जितने भी हैं इनके लिए ये मुकामी तौर पर अपनी अपनी कम्यून के अंदर ये फ्री ट्रांसपोर्टेशन का एक इजाजतनामा या पास, जैसे यहाँ मालमो में 15 साल से 22 साल की उम्र के बच्चों को उनको डाक के जरिए घर मिल गया है, वो अब बच्चे एंजॉय करेंगे सैर करेंगे तफरी करेंगे फुटबॉल खेलेंगे बारबेक्यू जो उनका दिल चाहे, उनको कार डाक के जरिए उनके घरों तक मालमो की हकूमत ने पहुंचा दिए हैं और फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए।
0: हाजी साहब ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। हाजी साहब ये मुतालबात तो हम अक्सर मिलजुल कर करते रहते हैं लेकिन उनको सहूलियात मिल गई है। ये थोड़ा सा 25-30 मिनट का सफर है, बॉर्डर क्रॉस करें, एक पुल है जो डैनिश और स्वीडिश आपस में मिले हुए हैं, चूँकि हमारे चूँकि लोकल मामलात भी सारे एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। लोग शॉपिंग करने जो है बेशुमार लोग वीकेंड में शॉपिंग करने स्वीडन जाते हैं, स्वीडन के लोग डेनमार्क आते हैं। तो हाजी साहब ये हमारे जो पार्लियामेंट के अगर मेंबर बन जाते हैं या बने हुए हैं, हम जरूरी तो नहीं है पार्लियामेंट का मेंबर हम कोई पाकिस्तानी नसाद या गैर मुल्की को ही काउंट करें, जितने भी डैनिश पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं वो सब हमारे ही मेंबर होते हैं, ये हमारा मुल्क है अब इसमें हम रहते हैं। तो हाजी साहब ये सहूलियात तो हमें यहाँ डेनमार्क में भी मिलनी चाहिए, खासकर पेंशनिस्ट जो है उनको फ्री पास मिलना चाहिए। आप सफ़र करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, आप पास बनाते रहते हैं, ट्रेन में आपने देखा होगा कि ट्रेन कई दफ़ा बिल्कुल ही खाली होती है, डब्बे बिल्कुल खाली होते हैं, तो अगर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों के लिए या जो पेंशनिस्ट हैं इनके लिए फ्री कर दिया जाए तो कितना बोझ बढ़ता है आजी साहब?
2: राय साहब मेन चीज़ तो ये है कि देखें, मैं काम करता था, आप काम करते थे, हम दोनों भाई रिटायर्ड हैं, पेंशनिस्ट हैं, हमारी इनकम जो है एक माकूल सर्टन अमाउंट टैक्स काटने के बाद हमारी जेब में हमें मिल जाती थी ना। लेकिन अब ये है कि स्कूल के बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, इनको उम्र के लिहाज से इनके पैसे भी कम होते हैं अगर ये काम करें, इनके इनको लोन अप जो जेब खर्च मिलता है वो भी कम, इसी तरह पेंशनिस्ट जो हैं अखराजात तो उनके बहुत ज्यादा हैं, उन्होंने मेडिसिन लेनी है, ऐनक बनवानी है या थेरापी करानी है। आप यकीन जानें कि आप अगर स्पेशल जगह पे जाके आपने 50 साल 55 साल इससे ज्यादा डैनिश भी हैं, मिलियन की तादाद में गैर मुल्की हैं, डैनिश हैं, उन्होंने अपनी बिहेंडिंग अगर करानी है तो बाद जगह पे 300-400 करोड़ की वो एक क्लास होती है, जिस क्लास में वो डॉक्टर आपकी जो है सारी चीजों को मेंटेन करता है, वो आपके लिए आपको वर्जिश करता है, आपकी थेरापी करता है, तो ये अखराजात ज्यादा हो जाते हैं लेकिन पेंशन कम होती है। लेकिन हम गुजारिश कर रहे हैं ना स्टेट से, हम दोनों भाई, ये बात मुझे बहुत सारे पाकिस्तानी मिलते हैं शॉपिंग करते हुए कि असलम आप सियासत की बातें भी करते हैं, हम सुन लेते हैं, लेकिन आप पब्लिक की बात जब रेडियो पर करते हैं, खुदा शाहिद है हम दुआएं भी देते हैं आपको, हम आपका नाम लेते हैं, हम खुश होते हैं, रेडियो का नाम अपना, टीवी का नाम, राजा साहब का, अच्छे कामों की तारीफ भी करते हैं, गो के हम कभी माइक पे नहीं आते ना कोई फोन करते हैं आपको, लेकिन मुलाकात के ऊपर बताते हैं कि जी वाकया ही पेंशनिस्ट और तालिब इल्म इनकी इनकम इतनी नहीं होती कि अखराजात जो है इनके जो शौक है, आप देखें एक फुटबॉल लेना है जो अच्छी क्वालिटी का बच्चे ने खेलना है, क्या वो 300-400 करोड़ से कम होगा? नाइक के बूट कम कितने महंगे हैं, कपड़े कितने महंगे हैं, फिर सारे लवाजमात हैं। अब इन्होंने मालमो वालों ने ये खुशखबरी दे दी है, कार्ड भेज दिए हैं, घरों में मिल गए हैं, बच्चों को मिल गए हैं, तो वो 24 घंटे उनको इजाजत है, टाइम लिमिट की भी कोई पाबंदी नहीं है। तो गुजारिश करते हैं हम स्टेट से, हुकूमत से, इस मुल्क के शहरी होने के नाते एप्लीकेशन देते हैं एंड स्विनिंग देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि भाई जो पेंशनिस्ट हैं उनका ख्याल किया जाए, उनको उनकी ही कम्यून के अंदर, हाँ कम्यून से बाहर अगर आप और मैं या कोई दूसरा आदमी जाता है तो हम वो रायसे कार्ड होगा एक टिकट और ले लेंगे, लेकिन अपनी जगह पे रहने वाला एरिया जो जितना भी बड़ा वसी है, छोटा है, बड़ा है, उनको फ्री कार्ड ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का मिलना चाहिए, जैसे मालमों के अंदर तालिब इल्मों को 2 माह के लिए दे दिया गया है कि आप एंजॉय करें, आप खूब अपने छुट्टियों को लुत्फ अंदोज हों, जहां जाएं दोस्तों के साथ बैठें, खेलें, बात करें, हैं जी। तो हम गुजारिश कर रहे हैं स्टेट ऑफ डेनमार्क से, कम्यून ऑफ कोपनहेगन से और दूसरी कम्यूनों की तरह, मैं ये बात बरमला कहने के लिए तैयार हूँ कि हमने काफी अरसा पहले ये आवाज उठाई थी और मालमों का हवाला दिया था कि आप यूरोपीय यूनियन में कानून तकरीबन सभी बराबर हैं, फूल सभी एक जैसे होते हैं, खुशबू एक जैसी होती है, रंग मुख्तलिफ होते हैं, हम गैर मुल्की हैं, डैनिश भी हमारे साथ हैं, लेकिन हैं तो फूल ही ना, अल्लाह ने बनाए हुए इंसान बनाए हुए हैं, तो लिहाजा हमारी दरखास्त पर गौर किया जाए। और पहले जब हमने आवाज उठाई थी, अब बस नंबर 71, 72, 74 फैक्स बिहार में आपने सहूलत दी है, तो हमें कोपनहेगन में भी दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। बस ये एक न्यूज थी मेरे पास जो मैंने आप तक पहुंचाई है, अल्लाह आपको खुश रखे, सुनने वालों की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम, दुआएं मेरे लिए दुआएं।
0: हाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया,
2: बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: अगले सुन लिया करे बात को। मैं ये कह रहा हूँ कि
1: सुनो
0: जितनी भी यहाँ पर उबर चलती रही है वो नाकाम रही है। अब उबर ने अपने 80% कस्टमर कायम कर लिए हैं और दूसरी ब्रांचों से वो कस्टमर आए हैं। उसमें बोल्ट भी है, उसमें डेंटेक्सा भी है, उसमें सारी ब्रांचें हैं और उबर के अपने ग्राहक भी हैं। आए क्यों हैं?
1: आपकी
0: क्योंकि
1: इंफॉर्मेशन बिल्कुल
0: इसमें
1: गलत है।
0: इसमें इसमें मैं सब सुने पहले बात गलत हो सकती है, आप बाद में बता दिया गलत होगी बता देना। मैं देखता हूँ जो मेरे साथ एक बंदा काम करता है कोपनहेगन टैक्सा का, मैं ड्राइवर में काम करता हूँ अपने इसके साथ उबर के साथ। अब ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि उबर छोटे टूर देती है, पैसे कम देती है, लेकिन उनका काम, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है आपसे, आपका तो माशाल्लाह कि चलता रहता है। मैं वो देखता हूँ कि वो जो कस्टमर अभी जैनश, बुढ़े बच्चे जवान यंग, वो किधर से आए हैं? पहले वो किस कंपनी के कस्टमर थे? पहले यहाँ पर उबर नहीं थी। वो इसी तरह जैसे आपने बताया ना कि इरमा से रीमा बन गई, न्यूटो बन गई, लोग आ गए यहाँ पर। राजा कपूर साहब के बाद बहुत काबिल अच्छी बात है कि यहाँ पर जो होता है ना, जो पैसे इन्वेस्ट करता है वो ग्राहकों को लेना भी जानता है। ये सबसे बड़ी नाकामी मैं समझता हूँ ये है, अब उबर के ऊपर बात करने से, कि जो अभी भी हमारे जितने भी कंपनी, जितनी 4-5 कंपनी है, इनके जो सुपर जो हैं वो सुपरवाइजर हैं या कह रहे हैं कोई फोरमैन है, वो उनको बैठ के बात करनी चाहिए कि हमारे डेनमार्क में कितनी टैक्सी हमें और चाहिए। अभी 600 टैक्सी और आ रही है, उसके बाद भी हम ये बहस कर रहे होंगे छोटे से शहर के अंदर, छोटे से मुल्क में इतनी टैक्सी नहीं आनी चाहिए, ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। अब कौन कितना कमाता है, कौन कितना कमाता नहीं है और कौन कहाँ जा रहा है, ये तो हो चुका। अब हमें ये करना चाहिए कि इस शहर में टैक्सी कितनी चाहिए। और दूसरी बात, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड की फोया कार्ड मिलता है उसको, है जो बंदा डैनिश का कोर्स कवर क्लियर करता है। हाँ, कोपनहेगन टैक्सा का थोड़ा सा ओवर है कि वो अच्छा करते हैं कि वो खुद भी टेस्ट लेते हैं, ये अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी कंपनियों का भी वही रिक्वायरमेंट रखते हैं कि आपके पास अगर ड्राइवर आपने लेना है फोया कार्ड, तो आपको PDA 2 डेनिश का या PDA 3 या PDA 2 आपको आपको हर हाल में करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप, मैं गलत बात कही तो आप मेरे साथ
1: क्या
0: बताइएगा।
1: ये करने में भी कोई फ्रॉड होता है?
2: नहीं, ये दो तीन बातें जो है ना, देखें बरखोदार, आप एज ए ड्राइवर चला रहे हैं, आपको गवर्नमेंट को पता है कि उसके काट मार के, यानी कि जो लेस करके जो रिबेट दिए जाते हैं उसके पल्ले क्या पड़ता है। मैं चीजों को जानता हूँ इनसाइड। और बात इस तरह है कि ये जितनी भी दो तीन बातें आपने, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोपन एगन टैक्स है या किसी दूसरी कंपनी की ना, इतनी इनकम नहीं कम हुई। हम एवरी डे एवरी मंथ हमें स्टेटिस्टिक दी जाती है, और जो ऊबर के यहाँ सिस्टम ही नहीं है, वहां गवर्नमेंट की कोई वैल्यूज नहीं है, वहां गवर्नमेंट कोई अपनी मर्जी अपनी बात कर ही नहीं सकता। कोपन एगन टैक्स वाहद कंपनी है जो गवर्नमेंटों की कंपनी है, ये किसी मालिक की कंपनी नहीं है। उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं जैसे कौन वो उनके क्या कहते हैं पैनल में आता है, फेस्टिवल्स में आता है कौन। हमारे यहाँ जो फोरमैन है वो सबसे हाईस्ट पोस्ट है। सो ये अभी थिंग
0: अंकल
2: है।
0: जी, सारी बातें ठीक है, मैं ये पॉइंट मेरा ये, क्या हमें अब तो
2: नहीं,
0: ये बात नहीं
2: अच्छा
0: करनी
2: मुझे बात
0: चाहिए?
2: करने दें, अब मुझे बात
0: नहीं, आप
2: करने
0: जो
2: दें।
0: पुरानी बात कह रहे हो, यहाँ आगे बात नहीं करनी चाहिए कि 600 और आ रही है, तो इसके लिए आप क्या क्या
2: आपको
0: सोचते
2: मेरी
0: हैं?
2: बात सुने ना, मेरी बात सुनो,
0: जी
2: आपको मुझे नहीं ये कहना कि मुझे बात करनी या नहीं करनी, ये मेरी मर्जी है प्लीज। ठीक है, अब मैं उस तरफ
0: एक
2: आ रहा
0: बात कहाँ
2: था।
0: चलेगी, मैंने तो बोला ही नहीं है मियां साहब आपको।
2: आप तो एक बात करके ना मंशा, ये फिर दूसरी
0: नहीं,
2: चीज हो
0: मैं तो
2: जाएगी।
0: बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ
2: ओ भाई
0: क्वेश्चन
2: जान, आप
0: किया कि
2: मुझे
0: वो
2: मेरी
0: वाला
2: बात तो सुन लेना।
0: जी। सुनाए
2: आप
0: सुनाए सुनाए सुनाए।
2: वो जो पहली बात जो है ना ऊपर की, जो मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, आपने आपके यहाँ ये इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है या गलत है कि हमें पता है और फुलसी एनमेल हो चुकी है, सारे ड्राइवर जो ऊबर चलाते हैं या दूसरी कंपनियों में भी कुछ हैं, वो सिस्टम डेनमार्क से नहीं ड्राइवर बने, ये मैं आपको बता दूं। इसकी बेशुमार मिसालें आ चुकी हैं, मैं जानता हूं आप नहीं जानते। और वो एक कानून कायदे की बात जो है, यहाँ का जो सिस्टम है वो बड़ी अच्छी तरह इन चीजों को जानता है, और वो अपने वक्त और टाइम और तरीकाकार के साथ उनकी, और मैं किसी भी क्रिमिनल सिस्टम में, चाहे वो टैक्स में हो चाहे वो टैक्सा में हो, मैं नहीं उसकी कभी हमायत करूंगा कि जी मेरे ये फॉरनर आ रहे हैं किसी मुल्क से आ रहे हैं और ये है वो है, आई डोंट, ये मैं नहीं हूं। यहाँ एक सिस्टम है उसे फॉलो करना है, दैट्स इट। उसमें जो टैक्सी, ये कहाँ की, ये शाह साहब सुन रहे हैं, ये कहाँ की बात है, یہ میرے پاس تو یہ ڈیڑھ مثالیں پڑی ہیں کہ ایک ڈینش
1: میاں صاحب شاہ صاحب نے ایک منشا نے بھی پوائنٹ

0: और हम मानते भी हैं एक दूसरे को, एक दूसरे को उनकी उम्र की वजह से, उनके तजर्बे की वजह से, उनके उनके तालीम की वजह से और उनके ओहदे की वजह से, उनके रुतबे की वजह से, उनके मालदार होने की वजह से हम उनको इज्जत तकरीम भी देते हैं। क्या लेकिन हमने उसका कभी सही फायदा भी उठाने की कोशिश की? जिनको मुझको एहतराम आपको मिलता है आपके ओहदे की वजह से, आपके मालदार होने की वजह से, आपकी फसाहत और बलागत की वजह से, आपके समझदार होने की वजह से, तो क्या आपने ये रुतबा हासिल करने के बाद या इज्जत हासिल करने के बाद उसका सही इस्तेमाल भी कभी किया? 90% लोग तो यहीं आके गलत हो जाते हैं। जरा सी औकात से ज्यादा पैसा पॉकेट में आता है, चार चौनिया पॉकेट में ज्यादा आ जाती हैं, जरा दो किताबें ज्यादा पढ़ लेते हैं, इलम की किताब थोड़ी सी ज्यादा पढ़ लेते हैं, डिग्री थोड़े से ज्यादा ले लेते हैं, 90% लोग तो वही करप्ट हो जाते हैं। मैं और आप, क्या हम लोग जिनको इज्जत देते ही है, आम जनता जिनको इज्जत देती है, वकार देती है, रुतबा देती है, क्या हम लोग जो है, क्या 90% हम करप्ट नहीं हो जाते? क्या 90% लोग हम जो है मैं की तकरार करना नहीं शुरू कर देते? और हम सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स मेरा साथ दे रहा है, वो चाहे दुश्मन भी हो, तो क्या उसको अहमियत नहीं दे देते, दलवा देते? क्या मीडिया के अंदर जाके वो बयानिया, जो पता भी होता है कि ये दुश्मन बयानिया है, ये तहरीक के तौर पे चलाया जा रहा है, फंडेड है, क्या हम उस बयानिए का हिस्सा नहीं बन जाते? ये हम बड़े जो लोग हैं जिनको इज्जत मुकाम दे दी जाते हैं, 90% लोग उसमें से उसी दुश्मन बयानिया का, उन्हीं कल्ट का जाने अनजाने में हिस्सा बन जाते हैं, उसका साथ दे रहे होते हैं। क्या हम समझदार लोगों को, क्या हम इन शानदार लोगों को जो हम एक दूसरे से ज्यादा समझते हैं, मुझे 60 साल हो गए, मुझे 70 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मैं लंदन से बैठा हूँ, मैं डेनमार्क से बैठा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड से बैठा हूँ, मैं इटली से बैठा बोल रहा हूँ, मैं यूके से, मैं कनाडा से बैठा हूँ, मैंने PhD की हुई है, और मेरे जैसा कोई बंदा ही नहीं है, और दूसरे को हम ये कहते हैं तेनू पता तो कुछ है को नहीं, तू चार किताब पढ़ दे लिया कर पहले। क्या हम ये तलख कलामी आपस में सुनते नहीं है? जिनको आम लोग घर से बैठी हुई खवातीन जो है अपना लीडर मान लेती हैं, लीडर बना देती हैं, और मीडिया के अंदर सोशल सोशल गैदरिंग के अंदर जाके तकरीर करने के लिए अपना बना देते हैं कि तुम हमारे लीडर हो, जाओ जाके तुम बात करो, क्या उसमें से 90% लोग आपको करप्ट होते दिखाई नहीं देते? क्या PhD करने वाले डॉक्टर जो है, क्या वो मुल्क दुश्मनी करते आपको दिखाई नहीं देते? क्या कश्मीर से निकले हुए लोग, क्या पाकिस्तान से निकले हुए लोग जो पाकिस्तान के स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं, मास्टर्स करते हैं, एमफिल करते हैं, PhD करते हैं, क्या वो हराम खोर लोग आपको पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते दिखाई नहीं देते? क्या वो बदबख्त लोग पाकिस्तान के एटमी पावर को रोल बैक करने की बातें करते नहीं दिखाई देते? क्या वो हराम खोर लोग मीडिया हाउसेस के अंदर जाके या सियासतदान बन के क्या वो पाकिस्तान के और दीन के खिलाफ दुश्मनी करते दिखाई नहीं देते? किस कदर जुल्म की ये बात है, अफगानिस्तान को 40 साल 45 साल हमने हमने खलाया पलाया, हमारी माओ ने हांडियां पका पका के उनको उनको भेजी के ये हमारे मेहमान है, मुसलमान भाई हैं। क्या हमने कश्मीरियों के साथ भाइयों वाला तलक नहीं किया? क्या बंगालियों के साथ हमने बहन भाई वाला तलक नहीं किया? क्या पाकिस्तान के खजाने से पैसा खर्च कर करके इनको तालीम दे के, उनको मुल्क से बाहर पासपोर्ट दे के पढ़ने के लिए नहीं भिजवाया? तो क्या यही लोग आपको डेनमार्क के अंदर कुरान जलाते हुए, लंदन के अंदर पाकिस्तान के झंडे जलाते हुए, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाते हुए, क्या आपको ये नहीं दिखाई दिए? तो ये जुल्म और ज्यादती जो करने वाले लोग हैं, इनका कला कमा क्या सिर्फ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान ने, फौज पाकिस्तान ने सिर्फ करना है? मैं और तुम कहाँ हो, मैं और आप कहाँ हैं, जो घर के अंदर बैठे हुए हैं कि जिनके सामने ये सारा कुछ हो रहा है और ये फितना फसाद पैदा करने वाले लोग आपके सामने दंदराते फिर रहे हैं? आपको पता है, खवातीन को भी पता है, मर्दों को भी पता है, नौजवान नस्ल को भी पता है, खामोशी हम इख्तियार करते हैं, नुकसान हम लोग करते हैं, हम, मैं और आप, राजा सर और आपके प्रोग्राम में आने वाले वो लोग 100 में से 90% लोग जो हैं मैं करके नुकसान कर रहे होते हैं और जालसाजी कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, झूठ का साथ दे रहे होते हैं, झूठे बयानी का, मुल्क दुश्मनी का साथ दे रहे होते हैं।
1: शाकर साहब, आपने बड़ी कीमती मालूमात दी। शाकर साहब, ये जो एक मुआहदा, तारीखी मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब हो गए, पाकिस्तान की स्टेट की हुकूमत होगी शहबाज शरीफ साहब, चूँकि जो वज़ीर आज़म है इस मौजूदा, इसके अलावा बहुत सारे लोग इसमें जो है पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ आ गई, तो ये एक तारीखी मुआहदा होने जा रहा है।

0: अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो ये सदियों याद रखा जाएगा।
1: जी बिल्कुल, अगर ये हो गया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज, जिसके बारे में उम्मीद थी कि आज संडे को इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे, दस्तखत होने के लिए तो बिल्कुल तैयार पड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन हर दफा जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो इजराइल और अमेरिका के मास्टरमाइंड्स हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इसकी कामयाबी हो, वो जो चाहते हैं कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, वन वे और द अदर मुस्लिम मुल्क जो है वो तबाह हो, राजा साहब वो बाज नहीं आएंगे। आज पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, अमेरिका का ट्रंप बैठा है, तारीफें करता है, दुनिया भर में उसकी तारीफें हो रही हैं, लेकिन याद रखिएगा, आप भी, मैं भी, हम भी, हुकूमत पाकिस्तान भी, फौज पाकिस्तान भी, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी, फील्ड मार्शल पाकिस्तान भी, याद रखिएगा, करदार अदा करने से जंग तो रुक गई, मुआहदा तो साइन हो जाएगा, लेकिन दुश्मनान इस्लाम अपने मकासद को कभी भी नहीं रोकेंगे। अमेरिका के अंदर ट्रंप हो या कोई और हो, इसराइल के अंदर नेतन्याहू हो या कोई और हो, वो मुस्लिम मालों को यक के बाद दीगरे तबाह दर तबाह करते रहेंगे। इस मिशन से वो पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आज हमारे वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफें दुनिया भर में हो रही हैं। मैंने अभी अपने ट्विटर पेज के ऊपर मैंने कई पोस्ट मैंने शेयर किए हैं, दुनिया भर के जो मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो सहाफती प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तारीफ कर रहे हैं, ट्रंप रोजाना तारीफें करता है, लेकिन याद रखिएगा, ये उस तबाही के खेल की विकेट के ऊपर खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं, जब इनको जरूरत पड़ती है ये वार कर देते हैं, चौका छक्का लगा देते हैं, जब इनका दिल करता है, जब ये खुद किसी मजबूरी के तहत आ जाते हैं तो अपनी क्रीज में महफूज होके खेलना शुरू कर देते हैं, अपनी क्रीज के पीछे भी हट जाते हैं, और चौके छक्के लगाने की बजाय हमारे जैसे आप जैसे लोगों का इस्तेमाल करके गुड्डी गुड्डी प्ले भी करते हैं, बैड कैप और गुड कैप की गेम शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, आज ईरान के ऊपर जो जंग हो रही है, आज से 15 साल 20 साल पहले से ये जंग होने की बातें हो रही थी। इसराइल ने कहा था मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, और हमने आपके प्रोग्रामों में कहा था कि जनाब ये हमला होके रहेगा, आज ये हमला हो गया, जंग हो गई। ईरान के लोगों ने, ईरान की अफवाज ने जिस साबित कदमी से मुकाबला किया, उसकी वजह से आज जो है सीज फायर की तरफ आए हुए हैं वो लोग। सेम उसी तरीके से जैसे इंडिया और पाकिस्तान की जंग में इंडिया को सीज फायर के लिए मिनते तरले करने पड़े, आज ईरान और इजराइल की जंग में अमेरिका को और इजराइल को मिनते तरले करना पड़ रही है, पाकिस्तान को फ्रंट पे ऊपर खिलवाया जा रहा है। आज नहीं तो कल इसके ऊपर अगर साइन हो भी गए, ये जंग रुक भी गई, तो लेकिन याद रखिएगा, यहूदी नस्ल जो दुश्मनाने इस्लाम है वो कभी बाज नहीं आएंगे, वो फिर मुड़ के आएंगे, वो फिर दोबारा आपको ईरान के ऊपर हमला करते दिखाई देंगे। और याद रखिए, इसी दुश्मन ने कह दिया है कि ईरान के बाद तुर्किया के ऊपर हमला करेंगे और ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। और वो लोग जो अपने सरों को रेत के अंदर दबा के अपना पिछवाड़ा छत की तरफ ऊंचा करके जो बैठे हुए हैं, वो जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान पे हमला नहीं होगा, इसी तरीके से ये ईरान के लोग भी कहा करते थे, कभी हो सकता ही नहीं कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे। राजा साहब, आपने वो वक्त भी देखा जब लोग कहा करते थे, बड़े बड़े दानिश्वर आपको कहा करते थे बैठा के आके कि ईरान तो अमेरिका का पिट्ठू है, ईरान तो अमेरिका का बगल बच्चा है, यहूदियों का सबसे बड़ा किला है ईरान, कभी हो सकता ही नहीं। ईरान के खुद लोग कहते थे कि कभी हो सकता ही नहीं अमेरिका और इसराइल हम पे हमला करें। मेरे साथ यहाँ लंदन स्टूडियो में बैठ के लाइव टेलीकास्ट के अंदर शिया कम्युनिटी के लोगों ने मेरे साथ बहस बाजा किया, लड़ाई तक की, और यही कहा कि कभी हो सकता ही नहीं अमेरिका पाकिस्तान ईरान के ऊपर हमला करे। लेकिन उसने आज से 10 साल पहले 15 साल पहले ऐलान किया था कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, आज उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। शिकस्तें फाश हुई उन मुजाहदों की वजह से, ईरान के अंदर इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले मुजाहदों, शहादत हासिल करने वाले लोगों की वजह से उनको शिकस्त हुई, इसके लिए उनको पीछे मुड़ना पड़ा। वो जो ताकत आई थी ईरान को की सिविलाइजेशन को तबाह बर्बाद करने के लिए, उसको पसपा होना पड़ा। वो मुल्क को तबाह करने आए थे, उनको पसपा होना पड़ा। सिविलाइजेशन को तबाह करने का नारा किसने मारा था? इसी ट्रंप ने नहीं मारा था, इसी नेतन्याहू ने नहीं मारा था, जो आज आपकी और मेरी तारीफें कर रहा है। आज वो मजबूरी के आलम में सिग्नेचर करने जा रहे हैं, अगर तो सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने थे तो पाकिस्तान के बजाय स्विट्जरलैंड का जेनवा का नाम क्यों लिया? और कल रात को ईरान ने कह दिया कि हम किसी जगह पे नहीं जाएंगे दस्तखत करने के लिए, अगर दस्तखत करने हैं तो सिर्फ पाकिस्तान आएंगे। तो जब सिग्नेचर होने के तक बात पहुंच गई थी, तो फिर इस दुश्मन ने ये वाला दरमियान में लुच क्यों तला? तो याद रखिए, मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते 10 दिन महीने के बाद ये दस्तखत तो होंगे। इसी बहाने जंग को लिंगर ऑन किया गया है, जंग को सीज फायर में कन्वर्ट करके वो सस्ता रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। बहाना ये है कि जंग में मुंह तोड़ शिकस्त हुई है, हर लिहाज से शिकस्त हुई है। ईरान के एटॉमिक पावर के येलो केक को उठाने के लिए उनकी उनके जो जहाज आए, हेलीकॉप्टर आए, उनको भी गिरा दिया, उनको भी मार दिया। जो बूट ईरान की सरजमीन के ऊपर उतरे, दावा करके उतरे कि हम उतरेंगे और फतह कर लेंगे, उनको भी पिटाई करके वापस भेज दिया गया। बाबनाए हरमज के ऊपर कब्जा करने की साजिश की गई, ईरान ने वो भी नहीं होने दी। तो आज शिकस्त खोरदा दुश्मन जो है, बहाने से पाकिस्तान को, अरब दुनिया के बाकी लोगों को मीडिएटर बना के, अगर वो सीज फायर को इंक्रीज करना चाह रहा है, जंग बंदी करना चाह रहा है, तो जंग बंदी तो हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, ईरान के 20 लाख लोगों ने, मर्दो जन ने नाम नोट जमा करवा दिए हैं, अपने पासपोर्ट जमा करवा दिए हैं कि हम अमेरिका के साथ जंग करने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार हैं। याद रखिएगा, ईरान की तमाम जो ब्रास थी, बड़ी जो ब्रास थी, टॉप ब्रास थी, उसको कत्लो करने करने के बाद, तबाह बर्बाद करने के बाद भी वो लोग बिल्कुल सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। वो हर दफा ये कहते हैं, जब भी उनके ऊपर हमला होता है, वो आगे से रिप्लाई बैक करते हैं, हमला करके दिखाते हैं। ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा।
0: शाकर साहब, तारीख का मुताला किया जाए तो हजारों साल की जो तारीख है, जंगें होती हैं, लोग अपने मफादात के लिए लड़ते हैं, आपस में दोस्तियां बनती हैं, सब कुछ होता है। अब तो हर चीज़ क्लियर हो चुकी है, हर कौम को पता है, हर मुल्क को अपने बारे में पता है। तो जो जो गलतियां करेंगे शाकर साहब, फिर वो हर कोई तो अपने मुल्क का दिफा करता है, कोई भी लड़ता है अपने मुल्क के लिए लड़ता है, तो दूसरे भी इसी तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं।
1: तो जनाब ये देखिए, आपकी आंखों के सामने इस कदर सारी दुनिया के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने, मुसलमानों ने नहीं, मुसलमानों के अलावा, बल्कि मुसलमान कम निकले, मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों ने क्या सड़कों के ऊपर निकल के एहतजाज नहीं किया कि ये फलस्तीन को तबाह करना बंद करो? तो किया उन्होंने बंद, हालांकि ये कहते हैं कि हम लोगों की बात सुनते हैं। जिस तरफ लोगों का रुझान हो जाए, जिस तरफ वोट ज्यादा दे दिया जाए, क्या दुनिया के तमाम बड़े ममालिक की पार्लियामेंट के अंदर ये वोट नहीं हुआ कि इसराइल को, अमेरिका को जंग बंद करनी चाहिए, फलस्तीन को आजाद करना चाहिए? क्या इन्होंने किया? जब तक इन्होंने अफगानिस्तान को तबाह नहीं कर दिया, क्या वहां से निकले? जब तक इन्होंने पाकिस्तान, दुनिया के जितने भी मुसलमान ममालिक इन्होंने तबाह किए हैं, शाम, यमन, इराक, लीबिया, मिस्र, और आपके सामने लेबनान तबाह बर्बाद हो रहा है, वो पीछे हट रहे हैं। और आज तो इस वक्त ये हुआ कि एन इस वक्त वो इंडिया को शामिल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर, कश्मीर के जरिए से पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम का हमला करवा के, अफगानिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करके, बलूचिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर, ईरान के ऊपर हमला आवर, और एट द सेम टाइम लेबनान के ऊपर हमला आवर। क्या आपने आज से पहले तारीख में कभी ये देखा था, एक वक्त में एक मुल्क को मस्मार किया करते थे, आज वो तीन मुल्क मस्मार करने की के मिशन पे लगे हुए हैं। क्या लबनान को मस्मार करने से पीछे हट रहे हैं वो? क्या लबनान के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा नहीं कर लिया उन्होंने? क्या वो शाम के अंदर अपना पूरा टैंक का ब्रिगेड दाखिल करके घुस नहीं गए हैं? क्या शाम के अंदर उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत नहीं बना ली? क्या यमन को उन्होंने बर्बाद नहीं कर दिया? और उसके बाद क्या तुर्किया को वो नहीं कह रहे कि इसके बाद हम तुर्किया को बर्बाद करेंगे? और आपने तुर्किया के अर्दोगान का पैगाम भी सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुन लिया सुना किसी ने तो मैं आपके प्रोग्राम के तहत मैं बता देता हूँ, तैयब अर्दोगान ने कहा है कि अगर ईरान के बाद इसराइल ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मेरी इस जंग में, तुर्किया और इसराइल की जंग में, 1 लाख से लेके 1.5 लाख तुर्किया के लोग शहीद हो जाएंगे। उसने जंग शुरू होने से पहले कह दिया कि अगर इसराइल ने हम पे हमला किया तो तुर्किया के मुसलमान जो हैं जो जंग लड़ेंगे 1 लाख से 1.5 लाख शहादतें होंगी, लेकिन इसराइल को हम तबाह बर्बाद कर देंगे, निस्तो नबूद कर देंगे, सफासी से मिटा देंगे। आज नेतन्याहू आपको बार बार ये कहता नहीं दिखाई देता? अमेरिका आपको सुलह करवाता हुआ सीज फायर करता दिखाई देता है? वो दूसरी तरफ से आपने हरमज के ऊपर, क्या आपको लबनान के ऊपर हमले करता नहीं दिखाई देता, जो कि शिक में लिखा हुआ है ईरान ने, ईरान के लबनान के ऊपर हमला नहीं होगा, मेरे अलाइज के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आपने हरमज को आजाद करेंगे, हमारे ऊपर हमले करने बंद करेंगे, हमारा जो जो फंड मंजूमद किया हुआ उसको रिलीज करेंगे, हमारे ऊपर पाबंदियां खत्म करेंगे, क्या वो बाज आ रहे हैं? और ये इसराइल बाज नहीं आएगा, लेकिन इन चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, जबकि ये सीज फायर हुई है, बेशक पाकिस्तान की वजह से हुई है, क्या आपको बहुत बड़े बड़े तजिया निगार, दिफाई तजिया निगार ये बात करते नहीं दिखाई दे रहे कि अमेरिका ने और इसराइल ने जानबूझ के ये सीज फायर की ताकि जितना बड़ा वो नुकसान कर चुके उसको उसको उसके लिए वो सस्ता लें, उनके जो असला डिपो थे वो खाली हो गए तो क्या दोबारा उसको भर लें? क्या आपको ये बहुत बड़े बड़े तजिया निगार जो करते आपको दिखाई नहीं देते कि इसराइल ने फिर दोबारा अपना जो असला है भर लिया है, अमेरिका ने फिर दोबारा अपना असला भर लिया है, फंड इकट्ठे कर लिए हैं, फिर दोबारा पैसा इकट्ठा कर लिया है? तो एट द सेम टाइम आपको उन लोगों के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, दफाई तजिया निगार ये भी आपको बताते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान को इस वक्त जो ब्लू प्रिंट तैयार करके दिया है उसके मास्टर माइंड ने, कि अब अगर इसराइल ने हमला किया, अब अगर अमेरिका ने हमला किया, तो उस ब्लू प्रिंट के को मद्देनजर रखते हुए ताक ताक के ईरान जो हमले करेगा उसमें इसराइल तबाह बर्बाद हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। अब तक उन्होंने अपने खिलौने इस्तेमाल किए, क्या आपको ईरान के लोग ये बातें करते नहीं दिखाई दिए? हमने तो आज तक वो असला इस्तेमाल किया जो 50 साल से पड़ा हुआ था, बंद पड़ा हुआ था, जो 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है, आ चुकी है, वो तो अभी तक हमने इस्तेमाल भी नहीं की। क्या ईरान के लोग आपको ये कहते दिखाई नहीं दे रहे कि हमने जितने ड्रोन इस्तेमाल कर लिए, जितने हमने मिसाइल इस्तेमाल कर लिए, उससे कई गुना ज्यादा हमने दोबारा रिप्रोड्यूस भी कर लिए हैं, हमारा खजाना फिर भर गया है, हमारे असला डिपो फिर भर गए हैं, नो डाउट अमेरिका के भरे हैं, इसराइल के भर गए हैं। इसराइल के बारे में थोड़े दिन पहले मैं एक तजिया निगार को सुन रहा था कि इसराइल ने अमेरिका और अपने खजाने जो है असला डिपो के इस कदर भर लिए हैं, उनको ओवरलोड कर लिया है, और इसराइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उसको उसके जखीरे बना दिए।
0: इतने जल्दी किस तरह भर गए
1: वो? प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस हो रहा है। ईरान जैसा मुल्क जिसके ऊपर बेशुमार पाबंदियां हैं, उसको हर तरफ से बंद कर दिया गया है, पाबंदी सलासल करके रखा हुआ उस मुल्क को, उस मुल्क के अंदर ने उन्होंने दोबारा रिप्रोड्यूस कर लिया है, उन्होंने अपने ड्रोन फिर दोबारा रिप्रोड्यूस कर लिए हैं, और दुनिया भर में इस वक्त ड्रोन की टेक्नोलॉजी में सबसे नंबर वन तुर्की है, दूसरे नंबर पे ईरान है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान उभर के सामने आ रहा है, अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने। क्या आपने वो चीखो पुकार नहीं सुनी इसराइल की कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ड्रोन किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए, हम इनको रोक नहीं पा रहे? तो क्या आपको इसराइल के इस बयान के बाद कि इसराइल के शहर मुख्तलिफ शहरों में असला के डिपो जो है भर दिए गए हैं, तो क्या उसके बाद आपने ये तजिया नहीं सुना कि ईरान की तरफ से जो आया, जो दुनिया के बेहतरीन तजिया निगारों ने बताया कि ईरान का इस वक्त सीज फायर के दौरान जो ब्लू प्रिंट तैयार हुआ है वो ताक ताक के उन जखीरों के ऊपर हमला करेगा, उसके पास वो सारे ट्रेसेस हैं, वो सीधा उन उन जखीरों के ऊपर हमला करेगा जहां अब इसराइल ने अपने अपने इसराइल के अंदर उनके जखीरे किए हैं। और इसराइल की आप जुरिडिक्शन चेक कर लीजिए, इसराइल का आप हदूद रकबा तैयार कर लीजिए, कितने किलोमीटर उसका रकबा है उस छोटे से मुल्क के अंदर, उस छोटे से शहर के अंदर कहाँ कहाँ उसने रखे होंगे अपने जखायर। तो क्या उन जखायर को जब ताक ताक के जब ईरान हमला करेगा, एक वक्त में 200-200 मिसाइल फेंकेगा, जितना मर्जी वो रोक लें, उन 200 में से 150 रोक लिया, 50 तो जाकर ठुकेंगे। तो याद रहे, ईरान के 20 लाख लोगों ने नाम पता खवातीनों हजरात ने लिखवा दिया है, और वो शाहराहों के ऊपर दंदनाते फिर रहे हैं, उन जगहों के ऊपर जहां हमला होता है, बम गिरता है, वहां जाके सरबकफ होके बाहर निकल आते हैं, जनाजे आके पढ़ते हैं बड़े बड़े, और इस डर खौफ से हट के कि हमारे ऊपर हमला हो जाएगा। उन 20 लाख लोगों को जिन्होंने अपने नाम पते लिखवा दिए, उनको शहीद करने के बाद ही कहीं जाके इसराइल को और अमेरिका को फतह हासिल होगी। और ये चीज बता दी गई है, ये चीज बताने वालों ने, मीडिएटर ने बता दी है कि आने वाले वक्त में अगर मजीद ईरान के ऊपर तुमने हमले किए, तो इस इलाके में जहां जहां अरब की दुनिया में तुमने अपने बेस बना रखे हैं, सब उड़ा दिए जाएंगे। और इसीलिए उन अरब मालिक से अब ये आवाजें बुलंद हो रही हैं कि अपना यहां से ये पंबल पूसा उठाओ, अपना यहां से बेस उठाओ, हमने तुम्हें यहां बुलाया था हमारी हिफाजत के लिए, हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। तो जंग जो जिस रुख पे जा रही है, उस रुख को भी आप जरा नजदीक से पढ़िए।
0: शाकर साहब, आपने बड़ा तफसील से बताया, बड़ा अच्छा तबसरा किया, एनालाइज किया। शाकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया।
1: राय साहब, मैं जाते जाते आप तमाम दोस्तों से, आपके सुनने वालों से ये अर्ज करना चाहता हूँ, अदब के दायरे में रहते हुए, कि हम सब का सबसे अवलीन फर्ज है, चाहे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर, ईरान के अंदर, और हमारे आजाद कश्मीर के अंदर जो कि हमारी शाहराग है, मकबूजा कश्मीर के अंदर, हम लोगों को, आम लोगों को अगर कोई गलत चीज होती दिखाई दे, तो उसके ऊपर फौरन आवाज बुलंद करें, उसको नेम एंड शेम करें, खामोश मत रहें, वरना मुजरम हम कहलाएंगे, हम आम लोग मुजरम कहलाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान या किसी मुल्क की भी हुकूमत हर जगह पे जाके करदार अदा नहीं कर सकती। अफवाज पाकिस्तान या किसी मुल्क की भी अफवाज हर घर की गली नुक्कर पे जाके करदार अदा नहीं कर सकते, उनके महदूद होते हैं, सोजरो जंग की सूरत में बाहर निकलते हैं। हमें आम जनता को, मुझे शाकर साहब को, राजा साहब को करदार अदा करना है, हमारे बहनों भाइयों को, बच्चों का करदार अदा करना है। मकबूजा कश्मीर के लिए, आजाद कश्मीर के लिए भी थोड़े दिन पहले ही फील्ड मार्शल साहब ने कहा, कश्मीर हमारी जगलर था, जगलर वेन था, हमारी जगलर वेन है, हमारी जगलर वेन रहेगा। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का, हम सब का ये ऐलान है कि पाकिस्तान हमारी रग रग में, कश्मीर हमारी शाहरग है। पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स ने कहा है, मकबूजा कश्मीर की आजादी तक ये जंग जारी रहेगी, लेकिन आजाद कश्मीर के और मकबूजा कश्मीर के रहने वाले आम लोगों को करदार अदा करना है, इन कल्पर्स को नेम एंड शेम करने के लिए करदार अदा करना है। पाकिस्तान ने 38 में से 35 जो उनके मुतालबे थे मान लिए। राजा साहब, इस गुफ्तगू के अंदर ये गुफ्तगू मिस हो गई कि 38 में से 35 मान लिए, 12 जो सीटों के ऊपर वो वबेला कर रहे हैं, जनाबे अली, मकबूजा कश्मीर से निकले हुए लोग जो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में पाकिस्तान के आके आबाद हुए, उनकी डिमांड के ऊपर, कश्मीरियों की डिमांड के ऊपर उनको ये 12 सीटें दी गई थी। उस वक्त ये डिमांड थी कि हमारी आवाज को दबाया ना जाए, हम वहां से निकल के आके आजाद कश्मीर में बैठ गए हैं, या पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में आके बैठ गए हैं, या दुनिया में किसी मुल्क में जाके बैठ गए हैं, तो हम मकबूजा कश्मीर के, हमारी माएं बहनें, हमारा घर बार सारा सारा कुछ अभी भी मकबूजा कश्मीर में है, जिसके ऊपर इंडिया ने कब्जा कर रखा है, 7 लाख फौज आके वहां बैठी हुई है, वहां के अंदर हिंदुत्वा के लोग जो है आके डोमिसाइल बना बना के अपनी ताकत में इजाफा कर रहे हैं, हमें आजाद कश्मीर की असेंबली में आवाज बुलंद करने के लिए मौका दिया जाए, हमें वोट कास्ट करने की दी जाए। आपके हमारे खानदान के अंदर लोग बैठे हैं कश्मीरी, हम हमारे वो ससुराल हैं, हमारे वो रिलेटिव्स हैं जो कि आज भी उस वोटिंग सिस्टम का हिस्सा है, वो अपने वोट कास्ट करते हैं। उस वक्त ये डिमांड थी कि ये 12 सीटें दी जाएं, तो उस डिमांड को पूरा करते हुए पाकिस्तान ने ये डिमांड पूरी की। आज अगर उनको इसके लिए कोई गिला है, कोई शिकवा है, तो उन 12 सीटें हासिल करने वाले मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ बैठ के पहले तय करें कि ये 12 सीटें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आपस में तय करने के बाद फिर पाकिस्तान की हुकूमत को बताएं, अफवाज पाकिस्तान को बताएं कि जनाब हमारा राजीनामा इस पे है कि ये सीटें खत्म कर दी जाएं, या ये सीटें 6 कर दी जाएं, या इन सीटों का कोई और रुख कर दिया जाए, इनको टेक्नोक्रेट कर दिया जाए, इनको कोई और हैसियत दे दी जाए, स्पेशल सीटों कह दिया जाए। तो बराहे करम अफहाम व तफहीम के साथ बैठ के फैसले होंगे तो तभी बात मानी जाएगी। 38 में से 35 फैसले मान लिए, 3 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली दे रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आजाद कश्मीर को, 320 अरब रुपए हर साल पाकिस्तान की गवर्नमेंट मकबूजा कश्मीर को देती है कि अपनी हुकूमत को चलाते रखो, 320 अरब सालाना पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है उसी गवर्नमेंट के खिलाफ जो आपकी हुकूमत चलाने के लिए आपको सस्ता आटा और दीगर खुरानोश पर मुहैया कर रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, आपको 3 रुपए हिसाब से यूनिट दिया जा रहा है, उसी के दर पे आप हो गए हैं, उसी अपने मालक के खिलाफ आप बोलना शुरू कर दिया है, उसी को जो आपको फंड कर रहा है, जो आपको जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है, जो आपकी आजादी के लिए जस्तजू कर रहा है, शहादतें हासिल कर रहा है, आप उसी के खिलाफ हो गए हैं, आप उसी के दर पे हो गए हैं, लेकिन आप आम कश्मीरी नहीं हो, आप आम मकबूजा कश्मीर के रहने वाले नहीं हो। ये चंद जो कल्प्रिट्स जो लोग हैं, जो करंदे हैं, जो भारत का जो हिंदुत्व का जो मकासद पूरा करने के लिए वहां उतर आए हैं, उनका सामना कीजिए सामने खड़े होके, सोशल मीडिया के ऊपर आवाज बुलंद कीजिए, और ये आवाज बुलंद हो रही है, बिराए करम उस आवाज का हिस्सा बन जाइए।
0: सामान नाजरीन, ये थे शाकुर कुरैशी साहब जो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे थे, तजिया कर रहे थे दुनिया के हालात को, जो है वो तजिया कर रहे थे अपने लिहाज से। सामान नाजरीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, कोई बात करना चाहता है, इस पर अपनी राय देना चाहता है, तजिया करना चाहता है, तो उसके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: को डिमांड करने वाले जो इसको अबॉलिश कर दिया जाए भाई, आप अगर 12 सीटें इस खत्म कर भी दिए जाते हैं, जैसे किसी ने कहा आपको इससे क्या फायदा होगा, और जिनकी सीटें आपको इससे क्या अगर नहीं करते तो क्या नुकसान होगा। नंबर टू, इसके बाद ये चूंकि हमने अलामती तौर पर ये सीटों को रखी हुई है कि जो जम्मू कश्मीर है ये एक कंप्लीट यानी कि एक रियासत है जिसको दो हिस्सों में जबरदस्ती तकसीम कर दिया गया, हिंदुस्तान ने एक आधे से एक हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, तो वहां से जो माजरीन जो है वो उस हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए हमने उनको पार्लियामेंट का हिस्सा बना दिया। और दूसरी बात यह कि ये 1960 में भी ये किसी शक्ल में 12 सीटें थी, उस वक्त ये काउंसिल होती थी कश्मीर काउंसिल। 1974 में जब अबूरी आइन बना और ये असेंबली बार से वजूद में आई तो ये 12 सीटें रखी गई, और इसका कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी की भी बात करता है तो वो जिन्होंने मैनिपुलेशन करनी है वो कश्मीर के अंदर भी 33 सीट्स के साथ भी मैनिपुलेशन करके घूमट जोड़ तोड़ कर सकते हैं, उनको इनके 12 सीटों की जरूरत नहीं है, ये खत्म भी हो जाए तो जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं। चौथी बात यह कि बाकी चीजें ठीक है, वो एहतजाज करें उनका हक है, वो जो मर्जी करना चाहते हैं अवामी मफाद की, लेकिन जो एहतजाज अवामी मफादात के मुतालबात की आड़ में जो उन्होंने जी हमारा अलग झंडा होना चाहिए, हमारी अलग करेंसी होना चाहिए, हमारा अलग पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं ये तो पाकिस्तान का जो मौकफ है कश्मीर के ऊपर उसको कमजोर करने की तो सबसे बड़ी घिनौनी साजिश और क्या हो सकती है। कि आप देखें हमारा एक मौकफ है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो करारदाद है उसके मुताबिक यहाँ पे प्लेबिसाइट होना है, और ये कश्मीर के जो लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि इन्होंने किसके साथ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के साथ इलाक करना है, तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं है। और अगर इतने यानी माजरीन की सीटों को खत्म कर देते हैं, उनका राइट ऑफ जो वोट है वो खत्म कर देते हैं, तो यकीनी तौर पे हमारी जो प्लेबिसाइट में स्ट्रेंथ होगी हमारे वोटर्स की वो तो कम हो जाएगी, तो ये फायदा किसको होगा, हिंदुस्तान को होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान को हमारे दुश्मनों को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की डिमांड बड़ी सोची समझी, मैं समझा स्कीम के तहत या मनसूबे के तहत
1: मनसूबे के तहत हो रही है। मलिक साहब आप काफ़ी देर से इंतज़ार में, मलिक खुशहाल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है, आप बहुत से इलाके सारे को बहुत करीब से जानते हैं।
2: जी शुक्रिया राय साहब, मैं सुन रहा था कर्नल साहब को भी, और माशाल्लाह कर्नल साहब बड़े वेल नॉलेज है और बड़ा अच्छा पेश कर रहे थे, जो जो जो बात हम करना चाह रहे थे वो मेरे ख्याल में उन्होंने 2-3 मिनट में ये सारे को समराइज कर दिया, बड़ा अच्छा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और इंडोज करते हैं हम इसको। इसी तरह अली शाह नवाज भाई ने भी जो जो बातें की, मेरा ख्याल है वो हम सब के मतलब दिलों की बातें हैं, वो हम करना चाहते हैं, और अली शाह नवाज जो है ना वो वेल कनेक्टेड भी हैं अदारों के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, और वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट लोगों के साथ भी, इवन एक्शन कमेटी के साथ भी इनका बड़ा अच्छा रिलेशन है। मैं थोड़ा सा जो राय साहब पीछे तारीखी पास मंजर की तरफ जाऊँगा थोड़ा सा, शुरू में जो जो ये ज्वाइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी जो है ना वो कहाँ से निकली, और ये क्योंकि आम बंदे को इस चीज का इलम नहीं है कि ये कहाँ से निकली ना, तो मैं वो थोड़ा सा पस मंजर में जाऊंगा पीछे। आजाद कश्मीर के अंदर 2022 और 23 में ना ये एक एक एक जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों ने मिल के ना जो है ना एक एहतजाज शुरू किया, जिसमें मरकजी लोग वहाँ के मकामी लोग थे जिन्होंने, जिसमें वकला तंजीमें थी, मरकजी अजमन तजरान थी, ट्रांसपोर्टर्स थे, तलबा तंजीमें थी, सिविल सोसाइटी के लोग थे, रिटायर सरकारी अफसरान थे, समाजी अवामी कारकुन थे, इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो उन्होंने मतलब शुरू में ना आप यानी बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज शुरू किया, महंगाई के खिलाफ जो है ना उन्होंने एहतजाज शुरू किया, तो जो है ना वो इसका आगाज जो जो शुरू में हुआ वो उसका इसका नाम जो है ना वो ये एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी नहीं था। इनके मुतालबात जो शुरू में ये थे कि आटे की कीमतों में कमी आनी चाहिए, बिजली के नरखों में कमी आनी चाहिए, इसी तरह और तरह के भी बेशुमार इनके जो है ना वो मुतालबात थे, जैसे पेट्रोलियम मसनवाद की कीमतों में रोजगार में इजाफा किया जाए, इसी तरह मंगला जो डैम की रॉयल्टी के लिए जो है ना इन्होंने आवाज उठाई, फिर इन्होंने कहा कि जी हमें वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की मुराद को कम किया जाए, गैर जरूरी सरकारी अखराजात को कम किया जाए, करप्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसी तरह साबी अमल को बेहतर किया जाए, भर्तियों में मतलब जो मेरिट को लाया जाए, तालीमी इदारों में सहूलियात फराहम की जाए, इसी तरह खाली असामियों में तकर्री की जाए। ये सारी मुख्तलिफ जो है ना वो मुख्तलिफ मैंने, चूंकि सोशल मेरे पास वो लिस्ट नहीं है लेकिन बहुत सारे

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: सामान्य नाज़रीन, मौसम के लिहाज से अगर बात करें तो मौसम आज बहुत अच्छा है। बादल भी हैं, धूप भी हैं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, खुशगवार मौसम है। सियासी मौसम भी अच्छा भी है और मिला जुला भी है। गैर मुल्कियों के बारे में या हुकूमत के बारे में, डेनमार्क के बारे में, डेनमार्क के शहरियों के बारे में, तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ हैं तजिया निगार अदनान अली अमीन, हमारे साथ मौजूद है। अदनान, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। साहब कैसे हैं?
1: अल्लाह का शुक्र अदनान, आप सुनाएं। ठीक है अदनान, आज मौसम के लिहाज से जो सियासी खबरें हैं, आज क्या ब्रेकिंग न्यूज ला रहे हैं, क्या कमेटियों में लोगों को जगह मिल रही है? बहुत सारे धमाके हो रहे हैं सियासी।
2: हाँ राजा साहब, धमाके तो काफी हो रहे हैं, क्योंकि आप देखा जाए तो टेक्निकली जो वो बन गई है और आस्ता आस्ता अपना क्या कहते हैं काम करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ा तो ये होता है ना, ये विवल होती है जिसे कहते हैं फैंस विवल, जिसमें ये सारा बजट वगैरह और वो आता है। और उसमें बिगेस्ट सरप्राइज ये है कि उसकी जो चेयरमैन है वो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंग्लिश लिस्टिंग की लड़की है, जिसका नाम विक्टोरिया बिल्सकूसिस है, क्योंकि वो उसकी माँ जो है वो है मेल में अमेरिका से, मतलब कि वो भी आधा। तो टेक्निकली देखा जाए एक बड़ी पोस्ट पे क्या कहते हैं एक बैकग्राउंड उसका उधर से भी उसकी माँ है और उसका एक हिस्ट्री भी है उसके अंदर, और वो उस पर क्या कहते हैं उस उधर में बैठ गई है। और उसमें सरप्राइजिंग ये है कि जो वाइस चेयरमैन है वो टेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब कह लें कि ये ऐसी उजवेल होगी जिसके अंदर दोनों का क्या कहते हैं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इंग्लिश लिस्ट ने एक तरफ जाने लगेंगे और वो डेफिनेटली दूसरी तरफ जाने लगेंगे। मैं टेक्निकली देखा जाए तो उलन के पुलसी के अलावा वैसे तो उनकी काफी चीजें आपस में मिलती भी हैं, क्योंकि वो भी पेंशन के बोल पे बोलते हैं और इन चीजों पे बोलते हैं। तो बंदा कह सकता है वो एक किस्म का उनका होपफुली अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। दूसरा ये है कि टेंथ फॉल के पच्ची जो है वो इन पे वेल के गवर्नमेंट पॉस्ट पे बैठ गए, 2024 से बैठे हुए थे और वो कंटिन्यू करेंगे। और इसी तरह से क्या कहते हैं काफी तब्दीली आई है, काफी बॉल क्या कहते हैं चेंज किया गया और काफी क्या कहते हैं बॉल वगैरह फेंके गए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अब अपना काम शुरू कर देंगे और अपनी चीजें क्या कहते हैं आस्ता आस्ता डेवलप ऑफ ले हैं और उन पे अब क्या कहते हैं किस्म का काम शुरू हो जाएगा। सियासी ब्रेकिंग न्यूज पे ये भी है ना कि 11-12-13 तारीख को फॉल के मौजूद होती है पावल के अंदर, जहाँ पे ये सारे खड़े जाते हैं, तो ये तो वहां रवाना हो गए हैं और डेफिनेटली वहां पे क्या कहते हैं सख्त मुकाबला आएगा, क्योंकि दो पुराने जमाने में जिस तरह होते थे ब्लॉक, उस किस्म के ब्लॉक आ गए हैं ना, कह रहे हैं गोल ब्लॉक और एक फ्लो ब्लॉक है, और देखते हैं किस बार कितने हैवी अटैक्स एक दूसरे पे होते हैं, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि लास्ट लोके पे तो हो रहे हैं कि वो उसने पिथावी की है फ्लो ब्लॉक के साथ, तो ये तो एक क्या कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया। उसके अंदर ये भी है कि जैसे आपको मालूम है कि पिछले दिनों में उलनिंग तो पैक भी बड़ा हार्ट हो गया हुआ है, क्योंकि मोटरस्पोर के भी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, टेंस पॉल के बच्ची पे कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो वही बात है कि अब देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या बनती है, कि वो खड़े होते हैं कि इससे और स्ट्रॉन्ग कितना ना हो जाए, क्योंकि ये काफी लोग इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि इसके अंदर वजह क्या है। तो वजह वो यही है कि जो

0: इस्तेमाल करते हैं लोगों पर, आप क्या कहेंगे?
1: यार साहब, मैं एक बात आपको कहूं कि वो अपनी इस बार मुझे बिलीव है कि वो उनको कुछ मिला रहा हुआ, तो वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को बेलता भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वो काफी काफी क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, और मेरे ख्याल से उन्होंने अपना सबक 2012 से सीख लिया हुआ है।
0: तो दांतों के इलाज के लिए उन्होंने बड़ी खबर है इस पर, मेरा ख्याल है डेनमार्क में सभी लोग खुश हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, तो दांतों का इलाज इतना जल्दी फ्री कर दिया जाए वो बेहतर नहीं है?
1: राजा साहब, उसके लिए पैसे की जरूरत है और वो लंबा प्रोसेस है, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी ये कम से कम सिर्फ इलाज करने का नहीं होता, पैसे का भी होता है और दूसरा कैपेसिटी का भी होता है। आपने फ्री करना है तो आपके पास 1000 कमी है डेंटिस्ट की, एम्प्लॉयर की और 10 क्लिनिक असिस्टेंट की, तो आपने पूरे पैकेज को क्या कहते हैं देखना है। और आप टेक्निकली देखें तो ये बात इंग्लिश लिस्टनर ने अपनी क्या कहते हैं काफी सालों से क्या कहते हैं वो लेके आ रहे थे और उनकी काफी खास थी। इसके अंदर दो पहलू भी हो सकते हैं जो जो देखा जाए तो बंदा कह सकते हैं कि इसके काफी वेयर्स हैं, और इसको एक पैकेज की तरह बनाया जाएगा, और जो इराओगन है जो नई सोनस मिश्रा बनी है वो डेफिनेटली इस पैकेज को बैठ के देखेगी ना कि किस तरह से इसको काम को आगे लेके जाना है। फर्स्ट आम काम तो यही है ना कि फर्स्ट पंक्चुअलिस्ट जिनकी कम इनकम है उनको डेंटिस्ट फ्री दी जाएगी, वो भी एक या दो दफा ट्रीटमेंट जो होती है ना साल के अंदर, इस तरह का पैकेज है। ज्यादा आपने कुछ जाना है तो फिर वो क्या कहते हैं उस चीज को अपनी तरफ से जाने। इसके अंदर ये भी पहलू है कि ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि एक टाइम पे इनने पूरा फ्री कर दिया था डॉक्टर की तरफ से कि आपको कुछ पीरियड होता है तो आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उसमें भी शायद ये कुछ पैसा वहां से तब्दील करके ला के इस तरफ इस पैड में फेंक दें, ये भी सोच रहे हैं। तो ये एक बंदा कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसको बनाया जाएगा और जिसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की जाएगी।
0: सबसे पहले जिस तरह बच्चे घरों में बैठकर गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, टेलीफोन पे खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त जो सियासतदान है वो भी एक किस्म की गेम खेलते हैं अपने पब्लिक के साथ, अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ?
1: नहीं राजा साहब, अपनी अपना वो कोशिश तो अपनी कर रहे हैं ना इस वक्त, मसला ये होता है कि पैसा जो है ना इस्तेमाल करना आसान होता है, अंदर लाना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं एक आपको बात कहूँ कि एक होता है कि हर चीज का होता है, कोशिश वो करेंगे अपनी तरह से, ऑब्वियसली गेम तो कोई खेलता है क्योंकि हर एक अपनी क्या कहते हैं अपनी सीट का होता है और अपनी क्या कहते हैं पावर का होता है, मगर ये भी पता है लोगों को कि ये जो बात इनने कर दी है ना इसके अंदर वोट बैंक बहुत है। इंग्लिश लिस्ट वाले कभी पीछे नहीं हटेंगे, वो देख रहे हैं कि हम पीछे हट गए तो हम भी खत्म है, तो वो तो पीछे नहीं हटेंगे। मगर इस पे डाउट इसलिए पड़ा था कि कौन होता है, लास्ट व्यू के ने कह दिया था कि कोई पता नहीं होता है कि नहीं होता, क्योंकि उसके वो फिर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चीजों की पड़ जाती है कि आप लोग अंदर क्या करके आए हो। अभी डिबेट चल रही है कि सारा फिनिशर प्लेस नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जब वो बैठेगा नया फिनिशर स्टार्ट उसकी टीम बैठेगी। अब टेक्निकली देखे ना कि सारे वास्क, मैं यही देख रहा था कि बहुत सारे फेंस के नए आ गए, पुराने हट गए, तो जब वो सारी उजवेल बैठेगी सब अपने आइडियाज देंगे, सब बैठ के इसको कोशिश करेंगे कि इसका कोई ना कोई क्या कहते हैं वे थ्रू निकले, क्योंकि बिजता वाले ने तो ये किया है ना कि जो उनका चेयरमैन है उसने कहा है कि जो हमारी वाइस चेयरमैन है पार्टी की इकोमोनली की पॉलिसी सारी वो चलाएगी, और इसी तरह हर पार्टी अपना क्या कहते हैं ना बंदा देगी जिसने नेगोशिएशन करनी है, और सबसे बड़ा बात ही एक मोनोली पे चलती है कि पैसे कहाँ से आने हैं, पैसे कहाँ से होने और पैसे को कैसे चलाना है। तो अब देखते हैं कि फ्यूचर डेज में, कमिंग डेज में कैसे ये
0: अदनान कल्चर मिनिस्ट्री किसके पास गई है?
1: कल्चर मिनिस्ट्री सीनियर स्टाम्पे के पास, जो उसके पास है।
0: तो आप देखते हैं कि गैर मुल्कियों के लिए बात तो बड़ी करते हैं, सैफ वाले भी बड़ी बात करते हैं, रेडिकल वेंस्टा वाले भी हमेशा वोट्स लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सोशल डेमोक्रेट के जो इंटीग्रेशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया, तो अब बात तो पता लगेगी कि जो जो इन पार्टियों में वो किस तरह अपना रोल अदा करें।

0: सर आप एक चीज हमेशा याद रखना कि उलनी है पुलटिकन का जो नेगोशिएशन इस किंग्स कॉलेज के अंदर नहीं लिखा गया हुआ, मगर उसके अंदर ये बात है कि ये सबको मालूम है कि जो गवर्नमेंट इस वक्त बैठी हुई है वो सिटिंग गवर्नमेंट है। आप टेक्निकली देखें तो उसके अंदर से लास्ट लोगे का और मेरे ख्याल उनके मंत्रिता डाले जाए ना तो वो बन जाते हैं करीबन 52, और वो मतलब पहले ही उस ब्लॉक के अंदर क्लियर चल है कि सामने पुलटी को नहीं चाहिए। टेक्निकली पार्लियामेंट के अंदर फिर आप लोग प्रिंस का भी डाल रहे हैं, नेपाल भी डाल रहे हैं, पैसवाल के पक्षी भी डाल रहे हैं, टेमस के मुखाड़ा भी डाल रहे, तो उलनी की पुलसी जो बन गई हुई है वो वहां पे ही रहेगी और हो सकता है कि उससे थोड़ी सख्त हो जाए, मगर वो देखा जाएगा। क्योंकि जैसे बात चल रही है अभी कि हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो उन लोग हैं, हम लोगों को बाहर से किसी इंक्लूडिंग डेंस को भी ये मसला है कि वो लोग शादी कर लें या कोई चीज कर लें तो उनके लिए बड़ी मुश्किल है, मगर जो नया बंदा ला रहा है साउथ एशिया से, वो पूरी फैमिली के साथ आ रहा है, तो सर ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये बहुत देखी जा रही है
1: ना तो ये
0: और
1: तो
0: इसका
1: गैर
0: बड़ा
1: मुल्कियों को
0: डिमांड चल
1: पूछना
0: रही
1: चाहिए ना कि अगर आपने जिन जिन को वोट दिए हैं वो बोलते क्यों नहीं है।
0: है। सर ये तो वो उनको ही पता है ना, ये तो क्वेश्चन इसलिए होता है कि मैं आपको एक एक एक, एक मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक ये इलेक्शन जब हो रहा था, इलेक्शन के दिनों में डिबेट हो रही थी, वहां पे ना एक छोटी सारी बात शुरू हो गई क्योंकि रुमाल पे चॉकलेट पर डिबेट शुरू हो गया और वो प्रिपरेशन के साथ आए हुए, तो मुझे पता था मेरे साथ बैठा हुआ था वो, उसकी भी पहनती थी वो जीप जीप स्टैंड उसके थे, ये मेरी बीवी का राज था वो, ये कहते आ तेरी कहते आ तेरी भी शामत आ जाएगी। मैंने कहा देख मैं कहता हूँ मेरी शामत नहीं आएगी, ये चुप कर जाएंगे। वो कहते हैं, मैंने कहा एक बात मुझे बता, तुमने मुझे सवाल ही कौन सा किया, मैंने कहा मुझे एक बात बता, तुम्हारी भी शादी हुई, कहता हूँ कहते तुम अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करते, कहते मैं बीवी अपनी बीवी की डिसीजन सपोर्ट नहीं करनी तो किसकी डिसीजन सपोर्ट करनी है, तो तू मैंने को से कहा तो तू मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट चला जाऊं कि वो रुमाल पहनती है, और उधर जितनी सेल्स थी वो सारे चुप हो गए, वो सारा एक बार में बंदा कहता तूने जवाब, मैंने कहा तो मैंने उसको जवाब सही दिया है, उसने कहा कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट करेगा मैं सपोर्ट करूं, मैंने कहा बात होती है कि आप करने की, अब जितनी पार्टी वाले ये सारे बैठे हुए हैं इन लोगों को ये सवाल अपनी पार्टी से पूछना चाहिए, मैंने जब पूछा था तो वो यही कह रहे थे कि हम आपस की तरह हमने किया, अब इसको हम तब्दील करेंगे वो करेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अब देखते हैं, अब नया बैठे हैं मौत को मैं डेफिनेट उससे पूछूंगा कि आप लोग वहां से तो खुला ला रहे हैं मगर जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं आप उनको पोलते नहीं देंगे तो वो मुल्क छोड़ के चले जाए या कुछ करें तो आपकी तो प्रॉब्लम सेम है, इसलिए आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी की ये करनी चाहिए कि जो यहाँ पे है उनको सारी सहूलतें दें, उसके बाद दूसरी तरफ जाके देखें कि आपको कितने लोगों की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के लोग छोड़ते जाएंगे आप बाहर से लाते जाएंगे, मौत में वही बयान देने अगले इलेक्शन में, एक अंदर आए एक बाहर आए, एक अंदर आए एक बाहर आए, मैंने कहा उस डिबेट को खत्म करना है तो कोई और तरीका करना पड़ रहा है, ये नहीं कि हम सेम तरीका बार बार एक करते रहे और वो भी बार बार एक बात करता रहे और हमारे सारे के कहते कान जो है ना वो तांगे पड़ते हैं इस बात को सुन सुन के, और आखिर में ये हो कि हम के चलो भारत पे असी कुछ और ही करिए।
1: अदनान, ये आखिरी सवाल है, इसी पर क्लोजिंग करेंगे। आपका तजिया क्या कहता है कि गैर मुल्की जिन पार्टियों में आने वाले दिनों में क्या करेंगे?
0: मैं इस पे कॉमर्स कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं आपको सच बात बताऊं मुझे नहीं पता, मैंने आप जैसे आपको पहले भी कहा है मैंने आज भी कहा है कि अब एक गैर मुल्कियों को एक किस्म का क्या कहते हैं स्टैंड लेना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक एक बात बताता हूँ, आपका मेरे से बड़े हैं, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है, आपने कभी देखा होगा कि पाकिस्तानी कमेटी कोई बड़ा सा इवेंट कर सकी होगा उस प्लेस पे रख कर सके या नहीं, देखिए जहां तक मेरा नॉलेज है इंडियन यहाँ पे हमारे बाद आए हैं वो ने परमिशन लेके वो हाउस प्लेस पे एक बड़ा इन्वेंट करने लगे क्योंकि वो क्योंकि उनके पीछे कुछ लोग आ गए हैं, तो यहाँ से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे से लोग पीछे से आके क्या कहते हैं चीजें करने लग पड़े तो हम क्यों नहीं कर रहे, हम तो इधर अब कह लें करीबन 56 60 सालों से 56 साल हो गए हमें यहाँ पे, تو ہم بھی تو کچھ کر سکتے ہیں.
1: بڑی اچھی بات کی ہے, انشاءاللہ اس پر بات چیت جاری رہے گی. عدنان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا.
0: اوکے, اللہ حافظ.
1: سامعین ناظرین, یہ تھے عدنان امین علی جو کہ تجزیہ کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں. ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کچھ بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہمارا آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے.
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।